कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं अनवर फारुखाबादी का लिखा नात अल्ताफ राजा और साथियों की आवाज़ों में।

0: नुसरत वसीम के गाए इस भक्तनाथ के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के संदर्भ में। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि अगर हमारी पशुओं की जो नस्ल है वो ठीक नहीं है तो हम जितनी भी मेहनत क्यों ना करें हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले पशुओं के नस्ल सुधार पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का ज़रूर उपयोग करें। पशुओं के गर्मी में आ जाने के बाद कृत्रिम गर्भाधान दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम करवाएं। पशुओं में गर्मी आने का समय, गाभिन कराने व ब्याने की तिथियों का सही लेखा जोखा रखें। गाभिन पशुओं की समुचित देखभाल करें। गर्भावस्था के अंतिम 60 दिनों में यदि पशु दूध दे रहा हो तो उसे सुखा दें। ब्याने के समय और ब्याने के उपरांत गाय की व नवजात बछड़ों की समुचित देखभाल करें। आवश्यक प्रजनन संबंधी सूचना सारणी में देखें। जहां तक आहार का सवाल है, उपलब्ध सूखे चारे का समुचित प्रयोग करें। घास को काट कर पशुओं को खिलाएं जिससे डंठल बेकार ना जाएं। इससे चारों की मात्रा का 10-15% भाग व्यर्थ जाने से बच जाएगा। चारे को खाने की नाद में ही खिलाएं। भूसे या घास की उपयोगिता बढ़ाने हेतु उन पर उनके भार का 1-1.5% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे चारे की पौष्टिकता व पचनीयता दोनों बढ़ जाती है और पशु को अधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, हरा चारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। पशुओं को भूसा आदि भिगोकर खिलाने से भी उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। चारा गाहों के चारों ओर बाड़ लगाएं और उसमें नियंत्रित चराई करवाएं। बछड़ों का आहार प्रारंभ से ही अच्छा हो जिससे आगे चलकर अच्छी गाय, भैंस, बैल या सांड बन सकें। बछड़ों को 2 सप्ताह की उम्र से ही चारा और दाना खिलाना सिखाएं। 3-4 माह की उम्र में माँ का दूध बंद कर दें। अच्छे घास के अतिरिक्त उन्हें 0.5 किलोग्राम दाना जरूर खिलाएं जिसकी मात्रा 6 महीने बाद बढ़ाकर 1 किलोग्राम प्रतिदिन कर दें। ये मात्रा 1.5 साल में 0.5 किलोग्राम और बढ़ा दें। जहां तक गाभिन गाय के आहार का प्रश्न है, 6 माह की गर्भावधि के बाद भरपेट चारा खिलाने के अतिरिक्त 1 किलोग्राम दाना रोज खिलाएं। इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्याने तक 3 किलोग्राम रोज कर दें। दुधारू पशु को पेट भर चारा खिलाएं। चारे की मात्रा, उसकी किस्म, उम्र, उत्पादन, मौसम, पशुभार आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। ये 6-10 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन हो सकती है। सामान्यतः दाने की मात्रा गाय को प्रति 2.5 किलोग्राम व भैंस को प्रति 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम रखी जाती है और बरसात के दिनों में जब चराई अच्छी हो तो ये मात्रा कुछ कम कर सकते हैं। पशु आहार में खनिज लवण मिश्रण आवश्यक है। इसे दाने का 2% भाग कर सकते हैं।

0: दूध उत्पादन लागत कम करने हेतु हरा चारा जहां संभव हो प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, पशु का आवास स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त और आरामदायक हो, जहां पर पशु को प्रतिकूल मौसम में अधिक सर्दी, गर्मी व वर्षा से बचाया जा सके। दूध दोहन विधि सही, दो समय निकालने का अंतर बराबर व क्रम नियमित हो तथा दूध पूरा व शीघ्रता से निकालें। गाभिन व हाल ही में ब्याए पशु व नवजात बछड़ों की समुचित देखभाल करें। जहां तक पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन का सवाल है, रोगी पशु के लक्षण जानना बहुत जरूरी है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और उनसे सलाह करें। ऐसे उपाय करें कि पशु बीमार ना हो। छूत के फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के रोग निरोधक टीके लगवाएं। किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप पशुपालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: textile sector. Addressing a press conference in New Delhi, National General Secretary of Laghu Udyog Bharti Om Prakash Gupta informed the conclave will bring together 400 micro and small industries associated with the textile sector from across the country. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over coastal Karnataka, Kerala, Mahe, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD predicted similar conditions in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. The IMD said Rayalaseema, interior Karnataka, Orissa, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya are likely to witness thunderstorms accompanied by gusty winds and lightning. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their highest-ever ODI total of 405/7. India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान के लिए आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी आज ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान कल शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान शुक्रवार 3 तारीख को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल कैम्बलवे के लिए बृहस्पतिवार 8 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी रविवार 11 तारीख को रात 9 बजे कैम्बलवे से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, माकाचुआ और अफराबे में भी रुकेगा। जलयान नालंदा मंगलवार 6 तारीख को सुबह 9 बजे नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 8 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज ये शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी वंडूर स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉलीबॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद्वीप से। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए। एमवी बम्बुका शहीद्वीप के लिए कल दिन में 11 श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद्वीप से स्वराजद्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी वंडूर स्वराजद्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 स्वराजद्वीप से शहीद्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए। एमवी रानीचंगा स्वराजद्वीप के लिए कल शाम 5 श्रीविजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों शुक्रवार 3 को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से छूटकर शहीद्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा।

0: अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

0: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम भौतिक सुख साधनों के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि उन हाथों की उंगलियां ही छोड़ बैठे हैं जिन्होंने हमें पहला कदम चलना सिखाया था, हमारे पूज्य माता पिता और घर के वरिष्ठ बुजुर्ग। यह अत्यंत पीड़ादायक सत्य है कि आज के समाज में बड़ों के प्रति आदर सत्कार की भावना घटती जा रही है। जो माता पिता अपनी पूरी जवानी, अपनी हर खुशी और हर पूंजी अपने संतानों के भविष्य को संवारने में न्योछावर कर देते हैं, वृद्धावस्था में वही माँ बाप अक्सर उपेक्षा और अकेलेपन की मार झेलते हैं। बुजुर्ग कोई बोझ या पुरानी वस्तु नहीं, बल्कि संस्कारों और अनुभवों की वह अमूल्य छाव है जिसके बिना कोई भी फल फूल नहीं सकता।
1: ऐसे घर में रहना भी क्या?
2: चल चल,

दोस्तों, संसार में किसी ने विधाता को देखा हो या ना देखा हो, किंतु यदि माता की गोद की ममता और पिता की संरक्षण का साया हमारे शीश पर है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो चुकी है। वरिष्ठ बुजुर्गों को किसी बहुमूल्य उपहार की लालसा नहीं होती, उन्हें बस संतानों का थोड़ा सा समय, मधुर वाणी और सच्चा आदर चाहिए होता है।

0: सुनिए और अपने आचरण से उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि वे आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। माता पिता का सम्मान केवल किसी एक दिन का कर्तव्य नहीं बल्कि दैनिक जीवन का संस्कार होना चाहिए। अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और सदैव उनके चरणों की छाव में रहिए। इस शुभ संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, बुजुर्ग वृक्ष की वह सूखी डाली नहीं है जिसे काट दिया जाए, बल्कि वे उस गहरे मूल की तरह हैं जो पूरे कुल को आंधियों और तूफानों में थामे रखते हैं। यदि आपके घर में आपके माता पिता या कोई भी वरिष्ठ परिजन उपस्थित हो, तो आज ही कुछ क्षण उनके समीप बैठिए, उनका हाथ थामिए, उनके अनुभवों

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे थे सुमित पवन बैक। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 378वीं कड़ी।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काकभुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

अभी आप रामचरितमानस गान की 378वीं कड़ी सुन रहे थे। गायिका थी अनुराधा पौडवाल तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। सूचना: आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों का शटडाउन किया जाएगा। अतः डेरी फॉर्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन क्षेत्र, मिनीवे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिक्की लेन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सूचना समाप्त हुई। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

आवश्यक सूचना। आम जनता को ये सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों को शटडाउन किया जाएगा। अतः डेयरी फार्म जंक्शन, CPWT कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन के क्षेत्र, मिनीवे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिकी लेन मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, VIP रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवा तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर CDPO श्रीमती वी उमा देवी से ली गई विशेष भेंटवार्ता। विषय रहेगा वरिष्ठ नागरिक सम्मान सुरक्षा और स्वाभिमान। तत्पश्चात पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे बेगम अख्तर, नसीम बानो चोपड़ा, CH आत्मा और जगमोहन। फिल्म गीत सुनिए सुबह 9 बजे। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तत्पश्चात 9:45 पर सुनिए कार्यक्रम फिल्मी गीत। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1384वीं कड़ी। बिखरेगा पुराने फिल्मी गीतों का जादू 11:30 पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में सुनिए सुपरहिट गीत। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर अनूप जलोटा और तलित अजीज को आप सुन सकेंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम प्रसारित होगा 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे पेरका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पुराने गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पहली कड़ी प्रसारित होगी 4:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में होगा कृषि कार्यक्रम। बांग्ला में आप सुन सकेंगे

बजकर 30 मिनट पर चिरंतनी कार्यक्रम, संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर और भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था, इन विषयों पर चर्चा के बाद आप सुनेंगे सिपीघाट के हरबंस लाल से बातचीत। विषय रहेगा सुपारी और नारियल, मेहनत के फल खुशहाल कल। 6:30 पर आप सुन सकेंगे सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य पे विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत पीएम जय। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10 बजे जापान में खेले जा रहे एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदश शततमे वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रवि विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्योत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4 चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35% गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबलवृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव

0: क्रतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा आन्तरिक कर्णाटक ओडिशा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत् गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन चत्वारि सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य षष्टिः अभवत्, यस्मिन् दश सुवर्ण पदकानि, एकविंशति रजत पदकानि तथा एकोनत्रिंशत् कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकै पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुषदलं महिलादलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टे, येन भारताय द्वे अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं अष्ट स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं है।

स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 9.0 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:09। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

आम जनता को ये सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों को शटडाउन किया जाएगा। अतः डेयरी फॉर्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन के क्षेत्र, मिनी वे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिगी लेन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति आज सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, आज सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर CDPO श्रीमती वी उमा देवी से ली गई विशेष भेंट वार्ता। विषय रहेगा वरिष्ठ नागरिक सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: बीड़ी, सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-23-56 पे कॉल करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में द्वीपों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बैठकें की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कल से किसानों की लंबित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मिनी मैराथन के मद्देनज़र सेलुलर जेल से कार्बाइन स्कोप तक का मार्ग कल सुबह 5:30 बजे से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएट के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली के विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में राजकोषीय एकल खाता भुगतान शुरू करने के लिए भुगतान प्रक्रिया और एकीकृत प्रणाली प्रबंधन प्लेटफॉर्म शामिल है। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में प्रशासनिक अधिकारियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ द्वीपों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बैठकें की। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव से जीबी पंत अस्पताल के निरीक्षण के बाद दिए गए निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए तथा आगामी सी प्लेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में ईंधन और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की भंडारण क्षमता को वर्तमान 16 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा सीएसआर फंड के माध्यम से विभिन्न द्वीपों में एम्बुलेंस, शव वाहन और एमआरआई मशीन सहित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान द्वीपों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवसायिक विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के जीबी पंत अस्पताल और एनिम्स दौरे के अनुपालन में अस्पताल में स्वच्छ और मरीज के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए सफाई, स्वच्छता और समग्र रखरखाव प्रणालियों को और अधिक मजबूत किया गया है। स्वच्छता और सेवाओं के संबंध में मरीजों और उनके परिजनों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अस्पताल में फीडबैक सिस्टम लागू किया गया है।

इसके अलावा जीबी पंत अस्पताल में मरीजों की सुविधा और बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से पंजीकरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किया गया है। मरीजों की डिजिटल पहचान और त्वरित पंजीकरण के लिए सभी 6 पंजीकरण काउंटरों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता सुविधा से लैस किया गया है। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के शहीद द्वीप के अपने दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पर्यटन विभाग ने उन्नत परिवहन और बैठने की सुविधाओं के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के उपाय शुरू कर दिए हैं। जेटी के मुख्य गेट से नाव तक पर्यटकों और यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए जेटी पर बैटरी से चलने वाली गोल्फ कार्ट तैनात करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। समुद्र तटों पर बैठने की बेहतर व्यवस्था भी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मिनी मैराथन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार ने पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 23 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। योजना को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ लागू की गई हैं। इसी के मद्देनज़र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर इन लंबित आवश्यकताओं को पूरा कराने का अवसर प्रदान किया है, ताकि लाभार्थियों का एक सटीक और सत्यापित डेटाबेस तैयार किया जा सके। मंत्रालय ने ऐसे सभी पीएम किसान लाभार्थी जिन्होंने अभी तक भूमि विवरण, EKYC या बैंक खाते का आधार सीडिंग पूरा नहीं कराया है, उनसे इस विशेष अभियान के दौरान इसे अनिवार्य रूप से पूरा करने की अपील की है। विशेष अभियान समाप्त होने के बाद भी जिन किसानों की अनिवार्य आवश्यकताएं लंबित रहेंगी, उन्हें योजना के तहत निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सभी अनिवार्य सत्यापन पूरे करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी संबंधित जोनल कृषि कार्यालय या नजदीकी कृषि उपडिपो से संपर्क कर सकते हैं। 72वें वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर आयोजित की जा रही मिनी मैराथन के सुरक्षित संचालन के लिए यातायात व्यवस्था की गई है। इसके तहत सेलुलर जेल से गर्ल्स स्कूल होते हुए कार्बाइंस्कोव तक का मार्ग कल सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा। आम जनता से इस अवधि के दौरान यातायात पुलिस द्वारा निर्देशित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है। पर्यटन निदेशालय ने रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP पर्यटन हस्तक्षेप 2026-27 के अंतर्गत युवाओं के लिए 2 विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें भोजन बनाने की कला, उसकी प्रस्तुति और स्वच्छता के अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं ड्रोन इमेजिंग प्रशिक्षण शामिल है। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 5 अक्टूबर शाम 3 बजे तक योजना अनुभाग में जमा कर सकते हैं। बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर और अंडमान लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के संबंधित सामान्य पाठ्यक्रम प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की ओर से विभिन्न जागरूकता एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन कल से 8 अक्टूबर तक किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल सुबह 9:30 बजे से स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आवासों का जुड़ाव, वन्य जीवों का संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पहाड़गांव थाना में नया बस्ती निवासी 37 वर्षीय महालाल मुर्मू के गुमशुदा होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान

0: के दौरान ब्रिजगंज स्थित काली मंदिर से लापता हो गई और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। व्यक्ति लगभग 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला, और उसने ग्रे और नीले रंग की हाफ पैंट तथा हरे रंग की हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस ने आम जनता से महालाल मुर्मू से संबंधित कोई भी जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन में देने की अपील की है। निकोबार जिले की जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के अंतर्गत खंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक के संविदा पदों पर पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे परका स्थित सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में द्वीपों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बैठकें की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कल से किसानों की लंबित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मिनी मैराथन के मद्देनज़र सेलुलर जेल से कार्बाइन स्कोप तक का मार्ग कल सुबह 5:30 बजे से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विविधताओं का संगम है हमारा प्यारा देश, जहां अनेक संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं, धर्म और रीति रिवाजों का संगम है। जी हाँ, ये भारत देश है मेरा।

वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं हैं, बल्कि इन शब्दों में हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना समाई हुई है। हम जब भी वंदे मातरम कहते हैं, हमारे हृदय में देशभक्ति की नई ऊर्जा जाग उठती है। तो आइए मिलकर कहें वंदे मातरम।

कहते हैं इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, लेकिन उसके दिल में हमेशा मिट्टी की खुशबू बसी रहती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी जिसमें हमने पहला कदम रखा, जिसकी गोद में हमने खेलना सीखा, जिसकी हवाओं में हमने सांस ली। इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर।

जाए, लेकिन उसके दिल में हमेशा मिट्टी की खुशबू बसी रहती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी जिसमें हमने पहला कदम रखा, जिसकी गोद में हमने खेलना सीखा, जिसकी हवाओं में हमने सांस ली, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर।

आइए दोस्तों अपनी संस्कृति पर गर्व करें, परंपराओं का सम्मान करें और उस भारत का निर्माण करें जहां अनेकता के बीच एकता हमेशा बनी रहती है। इसी संदेश के साथ दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

निर्माण विभाग द्वारा लंबालाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों को शटडाउन किया जाएगा। अतः डेयरी फार्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन क्षेत्र, मिनीवे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिगी लेन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948 के आश्विन माह की नवी तिथि यानी 1 अक्टूबर सन 2026। आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इस अवसर पर आइए अब सुनते हैं CDPO श्रीमती वी उमा देवी से ली गई भेंट वार्ता। विषय है वरिष्ठ नागरिक सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान।

0: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी परिवार की असली ताकत केवल उसकी युवा पीढ़ी नहीं बल्कि वो अनुभव भी है जो वर्षों की जीवन यात्रा से मिलता है। हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की वो धरोहर है जिनके अनुभव, संस्कार और जीवन मूल्य हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। श्रोताओं, हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ उनके अधिकारों, गरिमा, सुरक्षा और सक्रिय भागीदारी पर ध्यान देने का अवसर भी है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा परिवार और समाज उनकी खुशहाल जिंदगी में किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं समाज कल्याण निदेशालय की बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती उमा देवी। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार मैम।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस क्यों मनाया जाता है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारे समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है?
1: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, अधिकारों, गरिमा और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हमारे वरिष्ठ नागरिक केवल उम्र दराज व्यक्ति नहीं बल्कि वे हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के अनुभव, ज्ञान और परंपराओं के महत्वपूर्ण वाहक हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समाज के निर्माण में लगाया है, इसलिए उनके प्रति सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और संवेदनशीलता रखना हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: अब बताएं कि आज जिस तरह से समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है?
1: आज परिवारों की संरचना और उनकी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर छोटे परिवार बढ़ रहे हैं और रोजगार के कारण युवा सदस्य कई बार अपने माता पिता से दूर रहने लगे हैं। ऐसे परिवेश में वरिष्ठ नागरिकों को अकेलापन, सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा, भावनात्मक उपेक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान परिवार और

0: समाज के सहयोग से भी संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ नागरिकों को यह महसूस हो कि वे परिवार के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
1: परिवार में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने का सही अर्थ क्या है? क्या केवल उनकी ज़रूरतों को ध्यान देना ही पर्याप्त है?
0: निश्चित रूप से केवल उनकी भौतिक ज़रूरतें पूरी कर देना ही सम्मान नहीं है। सम्मान का अर्थ है उनकी बात सुनना, उनकी राय को महत्व देना, उनके अनुभवों का सम्मान करना, उन्हें परिवार के निर्णयों में सहभागी बनाना। कई बार वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, दवा और रहने की सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें समय और भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता। इसलिए हमें उनके साथ बातचीत करने, उनकी भावनाओं को समझने और उन्हें परिवार का सक्रिय हिस्सा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना वास्तव में उनके स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करना होता है।
1: जी, बढ़ती उम्र में नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियां, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी जीवन की गुणवत्ता को बहुत बड़ा अंतर दे सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित एवं पौष्टिक आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनानी चाहिए। हालांकि योग या चिकित्सा के अनुसार व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने में सहायता हो सकते हैं, साथ ही पर्याप्त नींद, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगता है कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज ना करें और आवश्यकता होने पर समय पर ही चिकित्सकीय सलाह ले लेनी चाहिए।
1: समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा कल्याण के लिए क्या भूमिका निभा रहा है?
0: समाज कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। विभाग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, उनकी समस्याओं के समाधान तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थागत एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य करता है। हमारा प्रयास यही है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक स्वयं को समाज से अलग थलग या असहाय महसूस ना करे।
1: आपके डिपार्टमेंट की ओर से कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
0: वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सहायता, वृद्धाश्रम एवं देखभाल संबंधी सुविधाएं तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य कल्याणकारी सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के बारे में भी जागरूकता प्रदान करते हैं।
1: उमा जी, देखा जाता है कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे में समाज कल्याण विभाग किस तरह से उनकी सहायता करता है?
0: अकेले रहने वाले या निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति विशेष संवेदनशील होती है। ऐसे मामले में विभाग उपलब्ध सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास करता है। जहां आवश्यकता हो उन्हें उपलब्ध वृद्ध देखभाल संस्थानों, आश्रय एवं अन्य संबंधित सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे मामले में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, परिवार और स्वयंसेवी संस्था भी इसमें सहयोग करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अकेलापन, असुरक्षा और उपेक्षा की स्थिति में असहाय न रहना पड़े।
1: कई बार वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, देखा जाता है। कई बार घर के लोग ही दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में समाज कल्याण विभाग से कैसे संपर्क किया जाए?
0: यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को उपेक्षा, दुर्व्यवहार या आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। वे अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र,

0: या CDPO ऑफिस, समाज कल्याण कार्यालय, जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या की जानकारी दे सकते हैं।
1: उमा जी, आप ये बताएं कि परिवार के युवा सदस्य अपने बुजुर्गों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए रोजमर्रा के जीवन में क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं?
0: इसके लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे कदम ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। युवा सदस्य रोज कुछ समय अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुन सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद का सम्मान कर सकते हैं, उन्हें अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल कर सकते हैं, मोबाइल या इंटरनेट से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें साथ लेकर बाहर जाना और समय समय पर उनका हालचाल पूछना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्योंकि देखा जाता है युवा बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं पेरेंट्स को, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो उनको उनकी हाल खबर पूछनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बताएं कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के बारे में आम लोगों को कितनी जानकारी है, इस दिशा में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए?
0: जी मैम, जागरूकता में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार सरकारी योजनाएं, अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखे हैं। इसलिए हमें जागरूकता कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्र और स्थानीय स्तर पर करते हैं कंटिन्यूअसली। ऐसे प्रोग्राम्स सामुदायिक केंद्रों में, पंचायत में, वार्ड में, गांव में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हम करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, जागरूकता शिविर और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से भी सरल भाषा में जानकारी देते हैं। साथ ही परिवार के युवा सदस्य भी अपने माता पिता और दादा दादी को सरकारी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग कर सकते हैं।
1: कैसे केसेस आते हैं आपके पास, वृद्धजन को लेकर कोई दुर्व्यवहार करता है, ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके पास?
0: हाँ,
1: तो किस तरह से आप लोग टैकल करते हैं केसेस?
0: ये एक्चुअली मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स एक्ट भी है, जो उसमें भी कमिटीज बने हुए हैं, जिसमें अगर कुछ ऐसी शिकायतें आते हैं तो उनको कमिटीज में लेके जाते हैं और वहीं पे चेयरमैन, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है सभी जगह में, तो उनके चेयरमैनशिप में ये समस्याओं का समाधान भी
1: हो जाता है। जी, अब अंत में, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इस मौके पर आप वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
0: मेरे सभी वरिष्ठ नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि वे स्वयं को परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण समझें। उम्र जीवन की यात्रा का एक चरण है और इस चरण में भी व्यक्ति का अनुभव, ज्ञान और योगदान अत्यंत मूल्यवान होता है। परिवारों से मेरा संदेश है कि अपने बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी न समझें, बल्कि उन्हें परिवार की धरोहर और अनुभव के स्रोत के रूप में देखें। उनके साथ सम्मान से बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें परिवार का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें। आइए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ जिएं, सुरक्षित रहें और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह समाज अपने अतीत का सम्मान करते हुए अपने भविष्य को भी मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की वो अनमोल पूंजी है जिसके अनुभव में जीवन की सीख, उनके आशीर्वाद से हमारी पीढ़ियों में खुशहाली छिपी होती है। उन्हें केवल देखभाल की नहीं बल्कि सम्मान, अपनापन, सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। तो उमा देवी जी, आज आप कार्यक्रम में आई और आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बहुत सारी जानकारी, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है वृद्धजनों को, उसके बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: श्रोताओं, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सीडीपीओ श्रीमती वी उमा देवी से ली गई विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था वरिष्ठ नागरिक, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: दादाजी, आपकी सेहत कैसी है?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 65 साल का हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। संतुलित आहार,

0: खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि और योग करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया। और समय पर दवाइयाँ लेते हैं?
0: हाँ हाँ, समय पर दवाई लेता हूँ और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी जाता हूँ। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है।
1: बहुत अच्छा दादाजी। अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते, गोयनकास की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयनकास में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयनकास से। गोयनकास की तरफ से शुभो दुर्गा पूजा।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

0: आम जनता को ये सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबालाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों को शटडाउन किया जाएगा। अतः डेयरी फार्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन क्षेत्र, मिनीबे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिकी लेन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सूचना समाप्त हुई। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब लीजिए सुनिए श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान।
1: पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महती भूमिका है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में यदि विवेचना की जाए तो भारतीय महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही है। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातःकाल को सूर्य अर्घ्य देना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक अजैविक व जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य, वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण

संरक्षण के प्रति हमारे संस्कारों को आधुनिक समाज ने रूढ़िवादिता कहकर हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर कर दिया है, किंतु आज पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। भारतीय महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहां भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य हुआ है, उसका मुखर विरोध हमारी पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया है। सर्वप्रथम हम अपनी संस्कृति पर दृष्टिपात करें और सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत त्यौहार के अवसर पर या यूं ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों यथा पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, आम आदि तथा अनेक पुष्पों एवं विभिन्न पशुओं, गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करना एवं उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से संरक्षण प्रदान करना देखने को मिल जाता है। इसी तरह हमारी महिलाओं ने न केवल पेड़ पौधों अपितु पशु पक्षियों के प्रति भी संरक्षण की संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भी संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जैसे गंगा पूजन, कुओं की पूजा करना अथवा तालाब की पूजा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के प्रति महिलाएं सदैव से ही अग्रणी रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं द्वारा प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संरक्षण की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है एवं आज भी देखने को मिलती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत की सामाजिक रचना में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष कई गुना अधिक महत्वपूर्ण एवं सुविधा भोगी है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण एवं प्रकृति से सीधे रूप में संपर्क में रहने के कारण ये ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेष्ट है। आज ऐसे क्षेत्रों में जहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए लकड़ी एकत्र करने हेतु महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह जहां पानी की किल्लत है, खासतौर से रेगिस्तानी इलाकों एवं पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर ही है और एक एक घड़ा पानी के लिए 10-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्राकृतिक संसाधनों यथा वन, मिट्टी एवं जल से महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना गया है। खासतौर से आदिवासी लोगों में तो वन संपदा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः महिलाओं की ही मानी जाती है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण, खासतौर से वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है और महिलाएं इसके प्रति जागरूक भी है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनकी प्रणेता महिलाएं रही है। उनमें से कुछ प्रमुख है, खेजरली आंदोलन। राजस्थान में खेजरली आंदोलन पर्यावरण चेतना का अतुलनीय उदाहरण है। राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ यह आंदोलन गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। सन 1730 में जोधपुर के महाराज द्वारा बनाए जाने वाले महल के निर्माण हेतु जब लकड़ी की आवश्यकता हुई तो राजा के सिपाही कुल्हाड़ी लेकर खेजरली गांव में पहुंचे, जहां खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत से लगे हुए थे। किंतु गांव की महिला अमृता देवी ने सिपाहियों का विरोध किया और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी तीन पुत्रियों सहित वृक्षों पर लिपट गई तथा वृक्ष बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस खबर के प्रचारित होते ही 363 लोगों ने भी वृक्ष संरक्षण हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। इस घटना को रिचर्ड बर्वे द्वारा संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण देते हुए प्रचारित किया गया। चिपको आंदोलन। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए की भावना पर आधारित यह चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली स्थान से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, किंतु महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरा देवी इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी और चिपको वुमन भी कहा जाता है। लगभग एक दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जन सामान्य तक पहुंचाया। इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएं ही थी। गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेनी के वृक्ष काटने आए लोगों को चमोली गांव की महिलाओं ने यह कहकर

भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। विश्लेषण किया जाए तो यह शब्द भी ही भारतीय महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाता है। जिस तरह उनके जीवन में अपने प्रति पक्ष का स्थान है, वही स्थान वृक्षों का उनके जीवन में है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा स्नेह शायद ही किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर होगा। नवधान्या आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जंक फूड और हानिकारक कीटनाशकों व उर्वरकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन व उपयोग की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य भोजन संपन्न नगर बनाना है। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है। नवधान्या का अर्थ है नौ बीज। यह आंदोलन महिला केंद्रित आंदोलन है जो कि जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का कार्य कर रहा है। यह आंदोलन पर्यावरणविद वंदना शिवा के नेतृत्व में सन 1987 से चलाया जा रहा है। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित सेवा मंडल संस्था को 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु केपी गोयन का पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलंत्री के ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया। इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है। अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की वार्ता सुन रहे थे। विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, कविता पौडवाल और साथियों की।

सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था जीन्स फिल्म से। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

0: ป็นไงนะบ้าน
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपी की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम

0: को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
2: आयुष्मान भारत पीएम जय,
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं

0: जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज संभावना है, इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: Thillable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं बेगम अख्तर, नसीम बानो चोपड़ा, सीएच आत्मा और जगमोहन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बेगम अख्तर की गाई इस गज़ल से, जिसे लिखा है अली अहमद जलीली ने।

ये गीत था सियाच आत्मा की आवाज में। आवश्यक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी है, आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में जगमोहन को।

संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप बेगम अख्तर, नसीम बानो चोपड़ा, सी एच आत्मा और जगमोहन की गाई हुई चंद गज़लों एवं गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए आवारा फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज़ में, बोल शैलेंद्र के, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: सीमा सीमा
1: उठो।
2: क्या हुआ?
0: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
0: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
0: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
5: सूचना: आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबालाइन स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के समक्ष संचालित पाइपलाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण भूमिगत विद्युत केबलों को शटडाउन किया जाएगा। अतः डेयरी फार्म जंक्शन, CPWD कॉम्प्लेक्स, लंबालाइन, रांची टेकरी, संपूर्ण स्कूल लाइन क्षेत्र, मिनी बे के आंशिक क्षेत्र, गुरुद्वारा लेन के आंशिक क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिगी लेन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल

पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के आंशिक क्षेत्रों में आज दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सूचना समाप्त हुई।

आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

अलका याग्निक और उदित नारायण के एकाए कयामत से कयामत तक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा। व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार

0: लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं। और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान

0: आंकड़ों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में जीएसटी एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए जीएसटी परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया? और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जनसेवा से देश सेवा, और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं? इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस। इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए और

0: उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे। क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया है। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है। पुलिस का नाम आते ही छोड़ो, इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सके हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन 3 कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
2: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था। जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं

पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजन हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं।

0: बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं, और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है
1: जी
0: कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है, वही जनविश्वास में है। पहले यह होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में के वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है, तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों को आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है, क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी ना किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था, तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी

0: लाभ मिला है, इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ है।
1: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो चार कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, Labour 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन चार कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन चार कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
0: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए, 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स पे जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए, एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं, और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की,

0: इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल। और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है। और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है। और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है। और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है, इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेवल में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा। और इससे कहीं ना कहीं कॉपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो वो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए,

0: या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
1: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
0: जी।
1: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221 रुपया 39 पैसा है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण आए।
2: और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
1: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
2: जी,
1: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था,
2: यही था,
1: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या, अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। 2-3 प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
2: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर।

अभी आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। सुनवा रहे हैं हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। बोल समीर के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 10 बजे आप फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन पाएंगे, SMS My Choice। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें फिल्म के नाम और गाने के बोल इस नंबर पर भेजें। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। आइए अब सुनते हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा, इस फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माय चॉइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माय चॉइस में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता।

दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें फिल्म के नाम और गाने के बोल मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। चलिए, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म त्रिनेत्र का ये गीत, और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें सिपी घर से अमृत और मुस्कान ने। ये सुनना चाहते हैं प्यार का साया, इस फिल्म का ये गीत और इस गीत को गाया है।

आइए अब सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में छोटी सी बात। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें विम्बलीगन से सुनैना और शीतल ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म साथी का ये गीत, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

आइए अब सुनते हैं कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म फरेब का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें झारखंड से शिवगोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें भातु बस्ती से सोनिया और कंगना ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बादल का ये गीत, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शान का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और साथियों ने।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म क्या कहना का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें लंबा लाइन से साहिल और मनीषा ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें मजनू कटीला से, कमल बलूचा, मधु बलूचा, सागर बलूचा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ईमानदार का ये गीत, और इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1384वीं कड़ी।

0: श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने लिखते हैं,
1: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
1: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
1: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का,
1: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
1: जी।
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गाँव के लोग भी वहाँ आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुझी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी,
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो, तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है,
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
1: जी,
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा दिखा दो ना,
8: दिखा दो।
9: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
10: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
11: चलो चलो चलो चलो।
12: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
13: बहुत अच्छी।
14: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
15: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
15: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
15: जी
4: मैडम आप ही कहते हैं, इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
15: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। हाँ अरे वाह, ये तो एक किताब है।
10: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
15: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
10: सैनिकों के बारे में?
15: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
15: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
15: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
14: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
10: सैनिकों को करनी होती होगी।
15: बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
14: मुझे भी।
6: इसके बाद में
4: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
15: हाँ हाँ हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित

0: एक मिनट, एक रास्ता है।
1: रास्ता है?
0: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ, कैसा रहेगा? अच्छा ना? अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
1: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
1: जी मैडम।
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
1: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
1: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
3: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
1: बताती हूँ बताती हूँ, सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह।
0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
1: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
1: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
3: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
1: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
4: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
4: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
4: ठीक है जी।
0: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
1: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
6: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अवसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
7: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
8: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
0: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
9: नमस्ते सर।
10: नमस्ते बच्चों।
0: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
1: जी मैडम।
10: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
1: धन्यवाद सर।
9: धन्यवाद सर।
10: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
1: धन्यवाद सर।
10: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
1: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
10: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
10: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
9: एक हिंदुस्तान।
10: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू

0: कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा, और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
2: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ?
3: मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
0: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
4: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। ये चाहे तादाद में ज्यादा है, लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये गन पकड़ो। फायर, फायर!
0: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
4: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए। ओवर एंड आउट।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
4: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्यूनिशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
4: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
4: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना दे पाए, आगे बढ़ो। फायर!
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
4: बाला सिंह, मैं तुम्हारी वैक्सीन भरता हूँ। कीप ऑन फायरिंग, छोड़ दे।

0: कोई यहां से निकलेगा नहीं, हम एक एक को मार के छोड़ेंगे। कीप ऑन फायरिंग।
1: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा।

मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1384वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं बहार इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है शमशाद बेगम ने।

रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए, अब सुनिए फिल्म बहू बेगम का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल साहिर लुधियानवी के हैं।

और अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले

जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है इंतकाम।

बैजू बावरा। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शकील बदायूनी की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने।

आइए अब सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म आर पार का ये गीत। धुन बनाई है ओपी नैयर ने व बोल मजरो सुल्तानपुरी के हैं।

0: सीमा, सीमा
1: उठो।
2: क्या हुआ?
1: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
1: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
5: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
6: कार्यक्रम की चौरी का विनंदी ये पाठा।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब

0: ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आवाज में चंद गजल सुन रहे थे। और अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गजलों का लुत्फ उठा रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता।

दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला एसएमएस जिसे हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलाकापुर महाराष्ट्र से नारायण इलांगे, सोपान ताइड़े और आशीष मोहेरकर ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दूर की आवाज़ का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में दूध का कर्ज, इस फिल्म का ये गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुभेंद्र कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, आमोल मानकर और शोभा ताई मानकर ने।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बगावत। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वानी थांडी ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म उम्मीद का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मासूम का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें ग्रीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance. Addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर

0: वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
0: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
2: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
3: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को

0: हमारी लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और

0: अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए संगीत के इस शानदार और सुरीले यात्रा के लिए। अब सुरीले गीत बजेंगे एक के बाद एक बिना किसी रुकावट के, तो हमारे साथ जुड़

0: Non-stop music.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने जितने भी गीत शामिल किए उनके फिल्मों के नाम थे, ये दिल आशिकाना, अकेले हम अकेले तुम, लेकिन होगी प्यार की जीत, इतिहास ये है जलवा, हर दिल जो प्यार करेगा, मेजर साहब, जुर्म और गैंगस्टर।
2: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ उम्र के किसी एक पड़ाव में नहीं होती। हर उम्र अपने साथ एक नई कहानी, एक नया अनुभव और जीने की एक नई वजह लेकर आती है। उम्र बढ़ना जीवन की रफ्तार का रुकना नहीं, बल्कि यह उस सफ़र का पड़ाव है जहां हमारे पास अनुभवों की सबसे खूबसूरत पूंजी होती है। तो आज का कार्यक्रम समर्पित है उन सभी वरिष्ठ जनों को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी, और अब समय है कि वे अपने लिए भी कुछ पल जिएं।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चेहरे की झुर्रियाँ सिर्फ उम्र की निशानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत मुस्कुराहटों और संघर्षों की कहानी है जिन्हें आपने जिया है।

दोस्तों, खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती, बल्कि अपनों के साथ मिलती है। कभी चाय की प्याली में तो कभी किसी पुराने दोस्त की आवाज़ में खुशी मिल जाती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे है। हमारी आज की दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंगे रेता का लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही इंग हरप तरन मिने महावत करे चोग नलक एलहॉय निकुन पनाम ही।

जम्मू माय बंदर द डिक्लीपुर एम वी रानी लक्ष्मी जू माय बंदर द डिक्लीपुर इप्त हुरिच इत सट कई रो त लापह नलक ने फिनिक्स पे जट्टी गाज हवान इप्त लुई अलाओ चिंगेत इत सट कई रो त लापह न रंग डिक्लीपुर सक माय बंदर अन मिनगम चोंग एल ताल करे न चुसरी विजयपुरम एम वी भारत सीमा जू माय बंदर द डिक्लीपुर इप्त लुई अलाओ चिंगेत इत हैर कई रो त लाहतम नलक ने हैडवाफ गाज हवान इप्त फैन अलाओ चिंगेत इतनेट कई रो तला सकाम नरांग टिकलीपुर सक माया बंदर मिनगम चो एल तला कर न जुसरी विजयपुरम चमू लिटिल अंडमान एम वी कैम्बल बे चू लिटिल अंडमान इप्त हुरज इत मजूत्र कई रो तहातम न लग हेड ऑफ गाज हवान इप्त लुई अलांगो चिंगेत इत मजूत्र कई रो तलापह नरांग लिटिल अंडमान न जुसरी विजयपुरम हेक अनमिन एम वी कैम्बल बे इप्त फैन अलाओ चिंगेत न चू लिटिल अंडमान इत मजूत्र कई रो तलापह न लग हेडवाफ गाज हवान इफे ए इत मजूत्र कई रो तलाहातम न रंग लिटिल अंडमान न जुसरी विजयपुरम एम वी कैम्बल बे चू लिटिल अंडमान इप्त तफुल अलाओ चिंगेत इत सम कई रो तलापह न लग हेडवाफ गाज हवान इफे ए इत मजूत्र कई रो तहातम न रंग लिटिल अंडमान न जुसरी विजयपुरम एम वी भारत सीमा असुर न चू लिटिल अंडमान man इत हैवर कई रो तलापह न लग हेड ऑफ गाज हवान इप्त हैवर अलाओ चिंगेत इत हैवर कई रो तहातम नरांग लिटिल अंडमान न चुसरी विजयपुरम एम वी कैम्बल बे चू लिटिल अंडमान इप्त मचूत्र अलाओ चिंगेत इत मचूत्र कई रो तलाप हातम न लग हेड ऑफ गाज हवान इप्त सम अलाओ चिंगेत इत मचूत्र कई रो तलापह नरांग लिटिल अंडमान न चुसरी विजयपुरम नालंदा चू लिटिल अंडमान इप्त काउक्सीन अलाओ चिंगेत इत मचूत्र कई रो तला पह न लग हेडवाफ गाज हवान इफे ए इत मजूत्र कई रो तहातम न रंग लिटिल अंडमान न जुसरी विजयपुरम जम्मू लिटिल अंडमान हेक तखार निकोबार एम वी कालिकाट चू लिटिल अंडमान दखार निकोबार इप्त तनई अलाओ चिंगेत इत सट कई रो तलापह न लग हेडवाफ गाज हवान इप्त तफुल अलाओ चिंगेत इत फैन कई रो तहारप न रंग खा निकोबार सक लिटिल अंडमान अनमिन गमचोंग एल तल कर न जुसरी विजयपुरम एम वी कालिकाट जू लिटिल अंडमान दखार निकोबार इप्त काउक्सीन अलाओ चिंगेत इत सट कई रो तलापह न लग हेडवाफ गाज हवान इप्त नेरसीन अलाओ चिंगेत इत फैन कई रो तहारप न रंग खा निकोबार सक लिटिल अंडमान अनमिन गमचोंग एल तल कर न जुसरी विजयपुरम चमु ननकौरी त कैम्बल बे एम वी कैम्बल बे चू ननकौरी त कैम्बल बे इप्त तफुल अलाओ चिंगेत इत मजूत्र कई रो तलापह न लग हेड ऑफ गाज हवान इप्त हैवर अलाओ चिंगेत इत हैवर कई रो तलापह न रंग कैम्बल बे सक ननकौरी अनमिन गमचोंग एल तल करे न जुसरी विजयपुरम नालंदा चू ननकौरी त कैम्बल बे इप्त लुसीन अलाओ चिंगेत इत मजूत्र कई रो

0: दादाजी आपकी सेहत कैसी है?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 65 साल का हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। संतुलित आहार खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि और योग करता हूँ।
0: वाह बहुत बढ़िया, और समय पर दवाइयाँ लेते हैं?
1: हाँ हाँ, समय पर दवाई लेता हूँ और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी जाता हूँ। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है।
0: बहुत अच्छा दादाजी।
2: अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: ஹாய், தயாங்கி தர தங்கி தச்சு த ஸ்டோரி.
4: ஹாய், ஹாங்கி திரேன் சின் தங்கி தர ஹை என் ஸ்டோரி. இ அலா அக் நி தட் வே கா தயங் ரே ஹெங் ஹு அக் மிசி நி தட் வே கா தயங் ரே ஹங் ஹ கிரேன் நங் கா ஹென் ரே லீன் அக் யங் ஓ என் வே கா ங ஹெங் ஹு அக் நி ந உலாயா உலாய் ங செஹென் ஹோல் ரே நெல் ஸ்கூல் ngach hamak ten e nei nak yeng re ngach ere anga he e no fo ho ha pari anga a pan wa te ru la ala o anga na ho ten o na he na ula ya na u hu nu en o poi he ngach ak ni ngach nang at ta he ngu la en hangam on la ya anong la sani po roken ulai nga te chehen te poi rai heng hu ngach anga a na ko ti ngach ke e ngach ke tu na iku yi kam hoka ku theren kin rok ken ngach anga a ngach ho tu ta kam hoka na ki siti ke ngach anga a na ichu kin sit nga na in le ku kel kal ren en re hang tam karit o ak yeng o nang puin te la ku re ngach anga a ngach ve ku ak yom kin sit nga anga na ho halang tu ren na ma ngor na ve ku ak yeng re ngach ang ngach in leng ten o yi te re ngach ak yeng o na in o ngach nga ro anga na in ak yeng re hara ta ku re man hara ta ku re ngach anga na lang ak yeng re ngach kap nga ro nang ak yeng re ayo ra ngach ak yeng o tak chana kare ngai ru nya ro re na puin tel nga tat ko lo lo nan ngo tarik ko an na dat lak nga ro ik tama ro nga na in ha ma ngai nga ro anga po ku o jin tangamu at kum pa hai wa po ju mi si at ila fo ho ta o he ju ulai nga tara hai yen ngai yi at ko ten tangamu at ulai nga da po yen kut ha ro nga cha anga anga nye ki mat hut tu ku nga ngam kin sit nga likin o nga ki sit ti nga cha anga ango an ngi mana ngen ngo tat lak tarik ye nyi hakap ngi yin tara hai yen ngo in ye nga tat chamak ren kun re yen falo ren tang hamak ngen o na ki sit ti anga ango angi hakaphi yalangi tangrai yen story nga yen
3: nga chintai hangam ta chu da story hoye te hangi ta halin lang program ingi hara hadre tin ka

ห้อยเตเฮกสินห้างดินเกกะจัสตินาห้างดินเกกะเจนเนตาน

0: nga cinta hangam ta halen lang program hat re tin ke ke hoi hanga dal nga nga sinta nga mu hekin hore chang ro ngi ta ka sa da e da ka oxygen rong da la sa ka ma nga yen
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पहली कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. आज हम रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ऐसे रिश्ते जो माता पिता और अपने यंग चिल्ड्रन के बारे में है. रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स. पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. उसमें भी अगर बच्चा टीनेज यानी 13 साल लेके 19 साल के बीच है तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है. वजह यह है कि इस दौरान उनमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं. दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे की शिक्षा ऐसी पड़ाव पर होती है जिससे उसका पूरा करियर तय होता है. टीनेज में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से बच्चे के सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनुशासीन हो सकता है. इस उम्र में बच्चे अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं. यही कारण है कि वे बड़ों से अपनी कुछ बात छुपाने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चों को भविष्य में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए टीनेज के दौरान बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. आज रिलेशनशिप प्रोग्राम में, खासकर आज लम्हे के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंट टीनेजर रिलेशनशिप के बारे में. इस प्रोग्राम में टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग की साथ ही जानेंगे कि टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग में माता पिता की क्या भूमिका है, क्या किरदार है. इस उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर और दोस्तों से ज़्यादा करीब होने लगते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना कि उनके दोस्त समझ सकते हैं. एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक टीनेज बच्चों की परवरिश परिवार के लिए सबसे कठिन चुनौती में से एक है. हार्मोन में बदलाव और शारीरिक परिवर्तन जैसे चीज़ें से जुड़े रहे टीनेजर्स को लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, खासकर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं. इससे वे अकेले और भ्रमित महसूस कर सकते हैं. वही पेरेंट्स इस बात से परेशान हो सकते हैं कि उनका बच्चा अब पहले की तरह अनुशासित नहीं है. कई बार ये चीज़ें बच्चे और पेरेंट्स के बीच मनमुटाव के वजह भी बन जाती है. इसलिए टीनेजर्स की पेरेंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है. तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे बदलाव आते हैं टीनेज में. टीनेज के दौरान बच्चों में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि ये बदलाव शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरह के हो सकते हैं. टीनेज बेहद नाजुक उम्र होती है. इसमें बच्चे नए दोस्त बनाना, नई नई चीज़ों को जानना, समझना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसके अलावा उनमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, दोस्तों की कंपनी ज़्यादा पसंद आती है, गैजेट से अधिक लगाव होता है, खानपान से जुड़ी आदतों में बदलाव होता है. इस उम्र में बच्चे किसी भी नई चीज़ को जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. वे बिना किसी की सलाह के खुद से निर्णय लेने चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं. इसीलिए टीनेज में बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है. इसमें माता पिता ये समझना जरूरी है कि बच्चों में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं. उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए जिससे वे कोई भी निर्णय बिना पेरेंट्स की सलाह के न लें. टीनेज में बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है. ऐसे में माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि

वो कब कहाँ आते जाते हैं, मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। दैट टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब बच्चे बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड रहकर, अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उनकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके, उन्हें पर्सनल स्पेस दे, लेकिन दिनचर्या पर नजर बनाए रखें। गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर लिमिट तय करें। ये भी जानकारी रखें कि वे अपने फोन में क्या देखते हैं। उन्हें अपने मन की बात शेयर करने के लिए प्रेरित करें। उनके सपने और लक्ष्यों का सपोर्ट करें। उन्हें हेल्थी डाइट और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्वतंत्रता दें, लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाएं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारने पीटने का तरीका अपनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। वे माँ बाप से डरने लगते हैं और उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं। इसके अलावा माता पिता टीन एजर बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ और गलतियां करते हैं जिनसे बचना चाहिए। इसे कैसे समझे हम टीन एजर्स की पेरेंट्स में न करे कैसे गलतियां, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा न पेश आए कि बच्चे बात करने से डरे, उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करें, उसे हर चीज के लिए मना न करें, किसी बात पर चिल्लाए या गुस्सा न करें। बच्चों को मारने पीटने की गलती कभी भी न करें दोस्तों। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो डांटे नहीं, समझे उन्हें। कभी आप भी ऐसे थे, आप भी उस किशोरावस्था से गुजर के ही अडल्ट बने और उसके बाद एक पेरेंट। अपने बचपन और अपने यंग डेज को याद कीजिए। टीनेजर बच्चों के पेरेंटिंग के लिए कुछ सुझाव है जो लम्हे प्रोग्राम में चेतन आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर और आर्ट जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। एनकरेज देम टू लर्न फाइन आर्ट्स टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद प्रोडक्टिव वर्क। उनके अच्छे प्रयासों और उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें। उन्हें लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। उन्हें उनकी पसंदीदा एक्टिविटी करने दें, उन पर लगाम न लगाएं। उन्हें एक्सरसाइज करने और हेल्थी डाइट लेने के फायदे को एक्सप्लेन करें। बच्चे से सड़क पर सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बात करें। उनसे ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग के खतरों के बारे में एक्सप्लेन करें। काउंसलिंग दें। किशोरावस्था बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिश्ते में तनाव आने की संभावना होती है। जब माता पिता पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। टीनेजर्स बच्चे मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में टीनेजर्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार ही सही राह दिलाती है, वरना मामला बिगड़ जाता है। टीनेजर्स बच्चों को दोस्त बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ खास बॉन्ड डेवलप करना होता है। ऐसा करने से रिश्ते एक अलग मुकाम हासिल करता है। उनकी रुचि में रुचि दिखाएं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उनके शौक के बारे में पूरी जानकारी हो, बस दिलचस्पी दिखाएं। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, लाइक देयर हॉबीज, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, गोल्स, और उनका समर्थन करने के लिए जितना हो सके भाग लें। With this information about parents and teenage relationship in today's Lamhe program, we come to the conclusion now. And I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. Call or message us on 0951522709. That's 0951522709. Or write to us at feedbackamc1@gmail.com. That's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle, spice.lamhe.vanilla. That's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

श्रोताओ, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पहली कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:40 हुए हैं। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए बांग्ला कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम में शाम 6:00 सिप्पी घाट के श्री हरबंस लाल से बातचीत होगी। सुपारी और नारियल, मेहनत के फल, खुशहाल कल। 6:30 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी। सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत पीएम जय। फिल्मी गीतों कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का लुफ्त उठाइए 7:20 पर। युवानी कार्यक्रम के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड तथा रात्रि 10:00 जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा रात्रि 11:00 हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल हमारी स्थानीय सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे प्रभाती वंदना। एग्रीडिस्क का समय रहेगा 5:55, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा भूमि की उर्वरक शक्ति कैसे कायम रखें। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 पर। 6:15 पर होगा कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा सत्य शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर सुनिए गांधी चर्चा की 14वीं कड़ी। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर वन्य प्राणी सप्ताह 2026 के उपलक्ष्य पर सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर भरका से वार्ता होगी। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन सकेंगे। 9:00 चंद फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:45 पर चंद फिल्मी गीत प्रसारित किया जाएगा। संदेश टू सोल्जर्स का प्रसारण समय रहेगा 10:00। दिन में 11:00 हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:30। 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। 1:10 पर गांधी जयंती के अवसर पर कल सुबह गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकेंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुफ्त उठाइए 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आप लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यू ही गाते रहो। हमारी दूसरी स्थानीय सभा की शुरुआत होगी शाम 5:00 तेलुगु कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 5:30। 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में श्रीमती बॉबी चौधरी से वार्ता होगी, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम समाचार तरंगिणी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का प्रसारण समय रहेगा 6:45। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का लुफ्त उठाइए 7:20 पर। युवानी कार्यक्रम के तहत 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरव गान।

इन कार्यक्रमों के अलावा 9:30 पर करंट अफेयर्स तथा रात्रि 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे तथा रात्रि 10:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी सभा की समाप्ति होगी। श्रोता, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। लीजिए, आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं ऐतराज फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के बोल व धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में जयदेव साहनी का लिखा सलाम नमस्ते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। स्वर शान और गायत्री की थी। अब लीजिए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की लिखी एक गीत रचना। फिल्म क्या कहना में इस गीत को संगीत से नवाजा है राजेश रोशन ने। गायक कलाकार है अलका याग्निक, कुमार सानू और सोनू निगम।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 5 बजे है, लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानुली निलयम वणकम तमिल मुदम वणकम नेर्खले

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 6 बजे है। लीजिए सुनिए किसान भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।

0: पुतला बोल रहे है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
0: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
0: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: नमस्कार, किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। साथियों, हमारा आज का विचार है, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है ना सही बात। इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब आइए हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पावर टिलर में कितने घंटे इस्तेमाल के बाद एयर फिल्टर बदल देना चाहिए, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, आइए अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर। आज 1 अक्टूबर है। हर साल 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। समाज और परिवार में वृद्धजनों के अमूल्य योगदान को याद करना और उनका सम्मान करना, समस्याओं के प्रति जागरूकता, बुजुर्गों को होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, अकेलेपन और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना, वृद्ध लोगों के अधिकारों, सुरक्षा और उनकी गरिमापूर्ण जीवन शैली को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाते हैं। वृद्धाश्रमों और सामाजिक संस्थाओं में बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की जाती है और समाज में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करने तथा उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सेमिनार व कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। साथियों, हमें सिर्फ वृद्ध दिवस मना लेने से ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। उनको ये महसूस नहीं होने देना कि वो वृद्ध हो चुके हैं, तभी जाकर के आज के दिन को हम सही मायने में साकार कर पाएंगे। साथियों, ये तो रही थोड़ी बहुत चर्चा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बारे में। साथियों, अब आइए हम जानकारी ले लेते हैं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में।
4: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत देश के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ताकि किसान भाई बड़ी आसानी से खेती में ट्रैक्टर का उपयोग खेती बाड़ी और खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए कर सके और किसानों की जिंदगी में सुधार हो। दोस्तों, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी है जो फसल की उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि और संचालन के खतरे को कम करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है। इस प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करना है, ताकि वे मशीनरी का उपयोग कर खेती बाड़ी के कामों को सरलता से कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें और उनकी रुचि भी कृषि में बनी रहे। अगर किसान भाई खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो देश की कृषि विकास दर में लाभ होगा। कृषि विकास दर को ऊपर रखने के लिए सेंट्रल की सरकार तथा राज्य की सरकार कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 20-50% सब्सिडी सीधे उनके खाते में प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो वह सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे आवेदन संबंधी सभी

0: शर्तों को पूरा करना होगा। ट्रैक्टर ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 60 वर्ष तक हो सकती है। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय भी रखी गई है, जो अलग अलग राज्य द्वारा निर्धारित की गई है। फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक हिस्सा है और इसे मिशन मोड में लागू किया गया है। तो आइए अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के क्या लाभ हैं। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में सीधे लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और जो इन मशीनों का उपयोग कर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। महिला आवेदकों को लाभ अधिक दिया जाएगा। किसान आवेदन पास होने के तुरंत बाद ट्रैक्टर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन की स्वीकृति के बाद आप उसके साथ के औजारों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इन औजारों पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान कुछ राज्यों ने किया है। योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। बाकी पैसा किसान लोन के जरिए चुकता कर सकते हैं। यदि आप भी ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जनसंपर्क केंद्र या ऑनलाइन तरीके से कर सकती हैं।
1: किसान साथियों, अभी आपने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना पर ये जानकारी हासिल कर रहे थे। किसान भाइयों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, आप में से अधिकतर किसान साथी खेतीबाड़ी के साथ साथ सुपारी, नारियल और सब्जियों की खेती भी करते हैं। साथियों, मेहनत का जो फल होता है वो खुशहाल कल होता है ना, सही बात। आइए, सुपारी और नारियल के विषय पर हम मुलाकात करते हैं सिपी घाट के रहने वाले श्री हरबंस लाल जी के साथ। हरबंस लाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: बताइए हरबंस लाल जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, अभी तो हम हमारा जमीन है उसी में बगीचा जैसा फ्रूट का है, नारियल सुपारी है और थोड़ा सा सब्जी है, उसी में हम लोग अपना ध्यान देते हैं।
0: जी, नारियल सुपारी की बात की अपने, सब्जियों की बात की।
1: जी जी,
0: कितने नारियल सुपारी के बागान होंगे?
1: हमारा उतना बड़ा बगीचा है लेकिन 100 नारियल का पेड़, 150 सुपारी का पेड़, इसी तरह के बाकी सब्जी का पेड़,
0: बाकी सब्जियों।
1: जी जी,
0: सब्जियों में क्या लगा रखा?
1: सब्जियों में आपका सब तरह का सब्जी है, आपका बैगन है, भिंडी है, लोबिया है, करेला भी है, कुमड़ा है, व्हाइट कुमड़ा है। हम लोग अपना जो है अपना परिवार का जो खाने का जो है वो अपना बगीचे से मिल जाते हैं। हम लोग बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: तो बाहर बेचते भी हैं?
1: नहीं,
0: बाहर नहीं बेचते, घरों के लिए ही,
1: अपने परिवार के लिए हो जाता है।
0: जी जी जी, तो जो सब्जियां आपने लगा रखी है इसके लिए बीज इत्यादि आपने तैयार किया होगा, खाद इत्यादि के बारे में बताएं।
1: बीज तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी कुछ जब उनका पास आता है बीज
0: जी,
1: और खाद भी जब आते तो हम लोग को फिर इंटीमेट करते तो हम लोग भी जाके वहाँ से लेके आते हैं। और फिर प्राइवेट जैसा बाजार से कुछ सब्जी का पेड़ है
0: जी,
1: या जहाँ भी बेचा है वहाँ से हम लोग फिर कुछ लेके आए थे बीज, फिर अपने घर में लेके लगाते हैं उसको, पेड़ बड़ा करते हैं, उसके बाद में फिर उसको अलग अलग डिवाइड करके गाड़ते हैं।
0: तो सब्जियों के लिए हरबंस लाल जी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए जो कि आपको अच्छी पैदावार मिले?
1: मिट्टी में उसमें जो है बालू मिट्टी होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर जी, क्योंकि मिट्टी जो पेड़ का जड़ को हमेशा ढीला रहना, और अगर आप चिकना मिट्टी में गाड़ेगा या मिट्टी जो जाम कर देगा जो उसका जड़ को, तो वो पेड़ उतने जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग अभी कोको पेड़ जो मिलता है वो कोको पेड़ भी जाने से उसका जो नारियल का जो आपका उसे तैयार किया था कोको पेड़, वो हम लोग का जो सब्जी का पेड़ बहुत थोड़ा जड़ को ढीला रखता
0: है,
1: तो उसका पर जब खाद डालता है तो वो उसमें मिट्टी में जल्दी खाद ज्यादा मिल जाता है उसको, इसलिए सब्जी भी थोड़ा अच्छा खाता है।
0: अच्छा जी, तो मतलब सब्जियों की ग्रोथ अच्छी तरह से
1: जी, जी,
0: पाता है। चलिए, तो सब्जियां तो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। नारियल सुपारी क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसकी?
1: नारियल सुपारी तो नारियल जो है हम लोग अपना ज्यादा नारियल हो गया, सूखा जो सूखा नारियल जो है उसको हम लोग आपका छील के फिर केजी में बिक्री कर देता है।
0: केजी क्या भाव दे रहे?
1: केजी आपका कभी 35 रुपया, कभी 20 रुपया, वो ऊपर नीचे होते रहता है।
0: जी जी,
1: वो तो एक रेट में नहीं फिक्स होता, वो कभी आपको ज्यादा मिलेगा कभी कम भी मिलेगा। और उसके बाद में फिर नारियल का जो है कोपरा बना के हम लोग नारियल का तेल बनाता है उसमें, तो नारियल का तेल अपना घर में यूज हो जाता है, वो फिर नारियल के तेल को हमने बिक्री भी कर देता है।
0: अच्छा, नारियल का तेल आप घर पे ही बनाते
1: हैं? जी जी, नहीं वो हम लोग मशीन में लेके, उग्रावेट में एक मशीन है।
0: अच्छा,
1: आपका न्यूपाल गाँव में एक मशीन है, वहाँ ले जाकर
0: नारियल के खोपड़े को आप तैयार करते हो?
1: खोपड़े को अपना वो नारियल को तोड़ के फिर थोड़ा सा जो थोड़ा दिन तक उसको सुखाएगा, उसके बाद में वो नारियल का से निकल जाएगा, फिर उसके बाद में बहुत सुखाना पड़ता है उसको।
0: जी, यही हम जानना चाहते थे क्योंकि वो किस तरह से आप कितना उसको सुखाना पड़ता है जब वो मशीन में जाता है,
1: इतना सुखाना पड़ता है कि जब आप उसको हाथ से दबाएगा तो नारियल दबेगा।
0: अच्छा,
1: जैसे अभी आप एक नारियल का जो टुकड़ा होता है जब उसको आप ऐसा तो नहीं दबेगा वो, लेकिन जब वो नहीं सूखेगा थोड़ा सा गीला रहेगा तो वो दबने लग जाएगा, अगर वो खराब होता है तो दबने लग जाएगा, लेकिन अगर पूरा सूख जाएगा तो दबेगा नहीं, और अगर दबेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए जब उसके बाद में फिर उसको पीस करके काट के छोटा छोटा पीस बना के फिर मशीन में लेके जाते हैं।
0: अच्छा, घर पे आप पीस कर लेते?
1: जी, घर में पीस करके फिर वजन करते, वहाँ वजन के हिसाब से वो लोग अपना जो पीसने का जो रेट लेता है। और
0: फिर भी कैसे, 1 लीटर का क्या ऐसे कैसे निकालते वो?
1: जैसे अभी आप, जैसे आप 10 केजी आप लेके जाएंगे, 10 केजी के ऊपर पीसने के लिए वो आपको 15 रुपया केजी पर केजी,
0: 15 रुपये
1: जी। और अगर आप उसका भूसी कुछ वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ नहीं, अगर जो भूसी वहाँ छोड़ देंगे तो आपको 20 रुपया लगेगा, अगर भूसी वहाँ नहीं छोड़ेंगे तो आपको फिर 15 रुपया पीस के देंगे।
0: तो क्यों, भूसी क्या इस्तेमाल में लाया जाता है?
1: भूसी में भी अगर आपके पास मुर्गी है
0: जी जी,
1: गाय है, तो आप उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिला के आपको मुर्गी लोग को, मुर्गी लोग को भी बहुत फायदा
0: होता है, वो दाने का काम।
1: जी, दाने का,
0: यानी कि बहुत ही यूजफुल है ये नारियल।

0: जो आप उगाते हैं।
1: जी जी जी
0: अच्छा, तो जब तेल तैयार हो जाता है तो वो क्या भाव फिर आप बेचते हैं?
1: हम लोग तो अभी 350 रुपया लीटर देते हैं।
0: लीटर
1: जी जी
0: तो वो शुद्ध होता है ना
1: एकदम
0: बिल्कुल?
1: शुद्ध होता है।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो ये तेल आराम से बिक जाता है कि आप बाजार
1: नहीं,
0: में भी
1: बहुत
0: डिमांड
1: डिमांड, बहुत
0: है?
1: डिमांड। जी
0: तो मार्केट में भी आराम से, बड़े आराम से
1: आराम से बिक्री हो जाती
0: बिक्री
1: है।
0: हो
1: जी
0: जाता है। तो साल में कितना आप बेच देते होंगे तेल निकाल कर?
1: इसका तो हम लोग आइडिया नहीं लगाया,
0: फिर
1: क्योंकि
0: भी एक
1: ऐसा
0: लमसम
1: लमसम कम से कम भी आपका अभी ये 10,000 रुपये तक का बिक्री कर देते हैं।
0: बिक्री
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: यानी व्यवसाय का वो भी एक बहुत अच्छा
1: जी बहुत
0: जरिया है,
1: बहुत बहुत
0: बहुत अच्छा
1: जी।
0: जरिया है। सुपारी की बात करते हैं, सुपारी कैसे आप ले जाते हैं बाजार तक?
1: सुपारी तो जी
0: देखिए, कच्चे सुपारी के
1: जी
0: भाव अलग होते हैं, सूखे हुए जो सुपारी छील कर हम देते हैं
1: जी
0: उसके
1: हम
0: भाव अलग
1: लोग कच्चे
0: होते
1: सुपारी की बिक्री नहीं करते हैं। सुपारी को सुखाते,
0: हैं। जी
1: सुखाने के बाद में, छीलने के बाद में, फिर वजन करके, फिर हम कभी 350 रुपया मिलता है, कभी उससे थोड़ा कम रहता है। जैसे
0: जी,
1: जैसे भाव मार्केट में रहेगा वैसा
0: वैसा
1: बिक्री
0: बेचते
1: हो
0: हैं।
1: जाता है। जी
0: तो मार्केट तक ले जाना पड़ता है?
1: नहीं, हम कुछ कभी अगर जरूरत पड़ता है तो मार्केट तक जाता है, अगर भाव यहाँ नहीं मिलेगा, अगर सुपर मार्केट में जब कम भाव रहेगा तो अगर कुछ और जगह मिल भाव जाएगा तो वहां मिल जाएगा,
0: लेके
1: और अगर
0: जाते।
1: यहाँ मिलता है सही रेट मिलता है तो फिर नहीं दे देंगे।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो यानी कुल मिलाकर मेहनत बहुत है, और लेकिन उससे अच्छा फायदा भी है, आमदनी
1: जी
0: आपको अच्छी मिल रही है। आप अपनी इस व्यवसाय से और इस आमदनी से खुश हैं?
1: खुश है मैं, खुश है।
0: खुश है।
1: जी
0: चलिए, परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में एक बेटी है, उसका ब्याह हो गया
0: जी,
1: अभी 3 साल हो गया, और बस पति पत्नी
0: दोनों
1: दोनों।
0: पति
1: जी
0: पत्नी
1: जी
0: का गुजारा बड़े आराम से चल जाता है।
1: जी जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। हरबंस लाल जी, अब हम इस मुद्दे पर आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो खेती बाड़ी की तरफ अग्रसर नहीं है, क्यों?
1: जी
0: इसके जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे?
1: इसके जिम्मेवार तो मैम किसको ठहराएंगे, ये तो सोचने वाला बात है।
0: कहीं हम माता पिता भी जिम्मेदार हैं?
1: क्योंकि क्योंकि माता पिता भी तो किसी के बच्चे थे ना पहले,
0: जी,
1: आज बच्चे जो हो रहे हैं वो भी तो उनका बच्चे भी तो पहले बच्चे थे, लेकिन अभी कम से कम भी आपका 20-25 साल से कब हो गया हो, या 30 साल भी हो गया होगा, तब से कोई माता पिता ना खेत में काम करने जाता, ना अपना माँ बाप का साथ में काम करता, ना उनका ध्यान देता कि भाई चलो हमारा बाप किसान है तो हम उनका थोड़ा सा हाथ बटा देगा, या पशुपालक है तो थोड़ा सा हाथ बटा देगा। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करे, आजकल जो है बच्चे लोग जो है वो खेती बाड़ी या अपना घर का जो मतलब बाग बगीचा उसमें ध्यान नहीं दे रहे।
0: ध्यान नहीं दे रहे।
1: जी जी
0: पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सरकारी नौकरी की
1: बस वो
0: तलाश
1: सर वो उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी कहीं मिल जाए तो
0: में।
1: बस वो कर लेंगे।
0: देखिए ना, सरकारी नौकरी तो बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन
1: जी
0: अपनी जमीन को वो हरा भरा रखे तो उससे वो अच्छा फायदा कमा सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी पहले का जो भी किसान थे वो अपने बच्चे को तो वो किसान से वही जानवर से जो भी उनका कमाई आता था उन्हीं से उनका पढ़ाई लिखाई करते थे, उनका ब्याह कराते थे। लेकिन उस टाइम में एक एक का घर में एक परिवार में 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा, आज तो एक ही बच्चा है,
0: एक ही बच्चे हैं। बिल्कुल
1: लेकिन तब भी वो परिवार में ऐसा होता है, सब
0: बिल्कुल
1: जितने भी है सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए भागे जाते हैं। जी
0: सही कहा
1: जी
0: आपने। हरबंस लाल जी, अब हम आते हैं कि आपके पास सुपारी है, नारियल है, सब्जियां हैं,
1: जी
0: तो कृषि विभाग की तरफ से आप कभी मदद लिए थे तरफ से, जैसे खाद हुआ या दवा हुई, इससे आपको मिलता है?
1: जी अभी बीच में 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टाफ आए थे, फिर वो किस तरह से आपका खाद बनाना चाह रहे, खाद तैयार करते हैं वो भी बताए गए, वो कुछ सामान भी दिए है कि खाद को कैसे तैयार किया जाएगा करके। तो जब भी उनको होता है तो हमको इंटीमेट करते हैं कि भाई अब हमारा अभी 24 में खाद आया है आप आइए, या फिर कुछ बीज आया है वो आइए, वो आते हैं हमारे
0: यानी
1: साथ।
0: इलाके में कहीं अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि होता होगा तो
1: जी
0: आप उसमें भाग
1: कभी
0: लेते
1: हमारा
0: होंगे?
1: सामने घर का बगल में कम्युनिटी हॉल है,
0: जी,
1: वहाँ आते हैं हर डिपार्टमेंट के आदमी, एग्रीकल्चर के भी आते हैं, जो जो भी उनसे होता है वो बताते हैं हमारे किसान को, जो भी है जैसा आते हैं। जी
0: आते रहते हैं।
1: जी आते हैं।
0: हमारे सीपी घाट इलाके में जो किसान भाई है, तो इनको मतलब काफी मदद कृषि विभाग की तरफ
1: जी
0: से
1: मिलता है
0: मिलता है,
1: मिलता है, तो
0: इससे आप खुश हैं?
1: खुश है।
0: चलिए, हम समझते हैं आपकी बात, हमारे युवा पीढ़ी जो सुन रही है उससे अगर जरूर सहमत होंगी कि वो अपने खेतों की ओर ध्यान देंगे। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: चलते चलते तो मैं सभी को यही संदेश देता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा जितना भी जमीन है तो, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप कुछ ना कुछ तो आप सब्जी भाजी या कुछ ना कुछ करके अपना परिवार के लिए कर सकता है, अगर करना चाहे तो।
0: बिल्कुल, अगर हम 1 रुपए खर्च करेंगे तो
1: जी
0: 2 रुपए
1: जी
0: कमा
1: तो आप
0: लेंगे।
1: वो जो सब्जी भाजी होगा वो आपका एकदम फ्रेश रहेगा और आपको खाने के लिए भी अच्छा रहेगा।
0: घर के इस्तेमाल के
1: जी
0: लिए।
1: जी जी
0: चलिए, बहुत ही अच्छा संदेश दिया, हम समझते हैं आपकी बातों को, जरूर वो ध्यान देंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुपारी और नारियल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। बता रहे थे सीपी घाट के रहने वाले श्री हरबंस लाल जी। उम्मीद करते हैं इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे जो आज की पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो खेतों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, खेतों से दूर ना जाएं। अगर हर घर हरा भरा रहेगा, हमारा देश भी आगे विकास की ओर अग्रसर होगा। साथियों, अब आइए हम ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। साथियों, अगले दिनों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे किसानों के लिए कृषि कार्य निपटाने का ये एक बेहतरीन समय है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों के लिए विशेष सलाह जो दी जाती है कृषि परामर्श के दौरान, वो इस तरह से है। साथियों, मौसम के पूरी तरह शुष्क और साफ रहने के अनुमान को देखते हुए किसानों को कुछ सलाह दी जाती है। खरीफ फसलों की कटाई और मड़ाई, धान, मक्का या अन्य तैयार हो चुकी खरीफ फसलों की कटाई का ये सबसे उत्तम समय है। कटी हुई फसल को खेतों में अच्छी तरह सुखा लें और सुरक्षित स्थानों पर भंडारण की व्यवस्था करें। रबी फसलों की तैयारी, खाली हुए खेतों की जुताई करके उन्हें धूप लगने दें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और हानिकारक कीट नष्ट हो जाएंगे। आगामी रबी सीजन के लिए उन्नत बीजों जैसे गेहूँ, सरसों, चना और खादों का प्रबंध पहले से कर लें। सिंचाई प्रबंध के दौरान बताया जाता है कि जिन देर से बोई गई फसलों को अभी पानी की आवश्यकता है, उनमें आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई रुकावट नहीं होगी। कीटनाशक और कवकनाशी का छिड़काव, यदि खड़ी फसलों में किसी कीट या बीमारी का प्रकोप दिख रहा है तो दवाओं का छिड़काव करने के लिए ये मौसम सबसे अनुकूल है। तेज धूप के कारण दवाएं फसलों पर बेहतर असर करेगी। साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुना। किसान भाइयों, आप कार्यक्रम में समय हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था पावर टिलर में कितने घंटे इस्तेमाल के बाद एयर फिल्टर बदल देना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 100 घंटे बाद। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है से क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
1: नमस्कार श्रोताओं, सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को रेखांकित किया जा रहा है। इसी सेवा भावना के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक विकास और कल्याण का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति और परिवार के लिए सबसे अहम है। गंभीर बीमारी के समय इलाज का खर्च परिवार पर आर्थिक बोझ न बने और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसी दिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, सेवा संकल्प अभियान की इसी विशेष कड़ी में आज हम जानेंगे आयुष्मान भारत योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अंडमान निकोबार के नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डॉक्टर पी लाल। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले हमारे श्रोता

0: योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अंडमान निकोबार के नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डॉक्टर पी लाल। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: जी ज़रूर, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार के जन कल्याण योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है।
0: जी,
1: इनफैक्ट ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जिसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है।
0: जी,
1: विश्व में कहीं भी इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम नहीं है जिसमें पूरा खर्चा जो है एक सरकार उठाती है, तो उतना बड़ा ये स्कीम है।
0: जी,
1: तो इसकी पृष्ठभूमि हम कुछ देखेंगे तो हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में लागू हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक को उत्तम श्रेणी के हाई क्वालिटी का जो हेल्थ केयर जो अफोर्डेबल हो, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा अपने जेब से खर्च नहीं करना पड़े और इजीली एक्सेसिबल हो, बहुत दूर उसको जाना ना पड़े ये सेवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के उद्देश्यों को साकार करने के लिए ये आयुष्मान भारत का जो है एक परिकल्पना किया गया और उसको लागू किया गया। तो आयुष्मान भारत के दो पहलू हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स या आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स हैं, जो कि हमारे इन द्वीप समूह में भी पूरे उत्तर से दिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक है, जहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसमें हेल्थ प्रमोशन की ओर, मतलब आपका स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए जो सेवाएं हैं, जैसे योगा हुआ या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हुआ या बीमारी से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन हुआ, गर्भवती महिलाओं का चेकअप हुआ, या जो आपके जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो आपके डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वगैरह जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, उनका स्क्रीनिंग और मेंटल हेल्थ का स्क्रीनिंग, जो ENT आई का स्क्रीनिंग, ये सभी जो पैकेजेस हैं हम लोग हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके लिए लोगों को बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। और हमारे इन द्वीपों में 129 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो ये सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये तो हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। जहां पर गंभीर बीमारियों की बात आती है, जहां पे द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का रोल आता है। तो यहाँ पे इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो पात्र लाभार्थी हैं इस योजना के, उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से इलाज मुफ्त में करवाया जाएगा, यानी कैशलेस ट्रीटमेंट होगा उनका किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में। तो पूरे भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों ही इसके अंदर एम्पैनल्ड हैं।
0: जी, तो आपने ये बताया कि जो पात्र लाभार्थी है, तो आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि पात्रता कौन इस योजना के लाभ ले सकते हैं।
1: जी, जहाँ तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, ये योजना पूरे देश के साथ 23 सितंबर 2018 में लागू हुआ था। तो उस समय इस योजना के जो पात्र लाभार्थी थे उनका चयन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो सेंसस हुआ था 2011, उसके बेसिस पे किया गया था। तो उस सेंसस के डेटा में से भारत सरकार ने कुछ 21,399 परिवारों को ढूंढ निकाला जो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद है और सबसे कमज़ोर है। तो वो 23

0: 1399 परिवारों में लगभग 80,000 लोग थे, सब फैमिली मेंबर्स मिल करके। शुरुआत में 2018 में इस स्कीम के, इस योजना के लाभार्थी थे, अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशरीज हैं,
1: जी
0: उनको भी जो है ये 21,000 जो 399 परिवार में जोड़ दिया जाए, अगेंस्ट दो परिवार जो जिनकी पहचान ना हो पाए सेंसस के सूची में से, तो उन लोग भी इसके अंदर जुड़ गए, इन टर्म उनके बदले में ये कैटेगरीज आए। तो ये
1: अच्छा
0: जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH और AAY कैटेगरी के रेशन कार्ड होल्डर्स इसमें लाभार्थी बन गए। इसके बाद क्या हुआ कि 2018 में ये स्कीम यहाँ पे चालू हुआ था, तो उसके पहले ही 2015 से हमारे यहाँ एक स्कीम चल रहा था, अनिशी, अंडमान
1: अनिशी
0: निकोबार आइलैंड स्कीम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो उस स्कीम के जो लाभार्थी थे वो तीन कैटेगरी के थे। एक तो जो आइलैंड के निवासी जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, दूसरा ये BPL कार्ड होल्डर्स, और तीसरा जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पेंशनर्स हैं
1: जी
0: जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो ये तीन कैटेगरी जो है अनिशी के अंदर कवर्ड हैं। तो जब ये 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम लागू हुआ, तो भारत सरकार ने फिर ये डायरेक्शंस दिए 2020 में कि आप सिर्फ हमें ही नहीं, सभी UTs को ये बोला कि UT के जो अपने स्कीम है वो बंद कर देंगे और उस स्कीम के जो लाभार्थी हैं वो भी आयुष्मान भारत
1: आयुष्मान
0: में लाभार्थी बन जाएंगे।
1: बन जाए
0: और उसके बाद भी भारत सरकार ने ये जो आयुष्मान भारत का जो दायरा और बढ़ाया, 2024 में भारत सरकार ने ये बोला कि क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गंभीर बीमारियां होने का
1: खतरा
0: चांसेस
1: बढ़ता
0: भी,
1: है।
0: खतरा बढ़ता है, तो इसलिए भारत सरकार ने ये बोला कि 70 साल के ऊपर जो भी लोग होंगे, चाहे उनका इनकम कुछ भी हो, वो
1: अच्छा
0: आयुष्मान भारत के अंदर लाभार्थी होंगे। तो ये 2024 अक्टूबर से 70 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो सब आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। और इसके अलावा जो हमारे आशा वर्कर्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं जो सोशल वेलफेयर के हैं, उनको भी इसके अंदर लाभार्थी बनाया गया है।
1: जब किसी व्यक्ति को अपनी पात्रता की जानकारी हो जाती है तो अगला कदम आयुष्मान कार्ड बनवाने का होता है।
0: जी
1: आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
0: जी तो जैसे मैंने अभी बताया कि विभिन्न कैटेगरीज के लाभार्थी इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर जो मैंने जैसे बताया कि PHH और AAY रेशन कार्ड
1: जी
0: होल्डर्स, या
1: जी
0: पहले जिसको BPL कहते हैं, और ये सेंसस 2011 सेंसस से चुने हुए जो बेनिफिशरीज हैं वो सब अपना कार्ड खुद बना सकते हैं,
1: ऑनलाइन
0: ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके लिए ये दो तरीका है, एक तो एक आयुष्मान ऐप है जो
1: जी
0: आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अपना मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपना कार्ड बना सकते हैं, या PMJY का वेबसाइट है PMJAY.gov.in, वहाँ पर भी जाके आप कार्ड बना सकते हैं। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर ज़रूरत है, उसमें OTP आता है, फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आता है, और उसके बाद रेशन कार्ड आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रेशन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन दस्तावेज उसमें ज़रूरत पड़ता है। और जहाँ तक 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सिर्फ अपना आधार कार्ड ही
1: आधार
0: ज़रूरत है, और वो भी खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये आयुष्मान ऐप से
1: जी
0: बना सकते हैं, या जो PMJY का वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके ये अपना कार्ड खुद बना सकते हैं। बाकी जो कैटेगरीज हैं, जैसे जो अनिशी के बेनिफिशरीज हैं, जैसे मैंने कहा जिनका इनकम लेस देन 3 लाख है, या जो पेंशनर्स हैं, उनको तो अभी हमारे जो GB पंत में एक काउंटर है रूम नंबर 1 OPD कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसको आयुष्मान भारत काउंटर हम लोग बोलते हैं, वहाँ जा करके बना सकते हैं। तो उसमें जो लाभार्थी इनकम क्राइटेरिया में आते हैं कि उनका इनकम लेस देन 3 लाख है, तो उनको तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उनका एनुअल इनकम ये है। तो यहाँ पे दिक्कत वही आती है कि हमारे पास सारी सुविधाएं यहाँ यहाँ पर तो फ्री मिलती है, अगर किसी को मेनलैंड
1: मेनलैंड जाना
0: रेफर
1: है
0: होना है

0: तब हाँ ये प्रोसीजर रहता है कि ये कार्ड का मतलब ज़्यादा फायदा होता है, इस कार्ड से उनका कैशलेस इलाज हो जाता है। तो उसमें जाहिर सी
1: इसमें
0: बात
1: भी
0: है
1: अगर
0: ये
1: इलाज के लिए अगर कोई मेल इन जा रहा है तो
0: जो
1: इस आयुष्मान भारत के अंदर सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स होंगे,
0: जी
1: तो ये लाभार्थी को कैसे पता चलेगा?
0: ये जैसे मैंने बताया कि एक आयुष्मान ऐप है,
1: उसमें
0: उसमें डाउनलोड करेंगे तो आपको सभी हॉस्पिटल का
1: हॉस्पिटल्स,
0: जानकारी आपको मिल जाएगा, आप
1: अच्छा
0: सर्च कर सकते हैं उसमें, या PMJY का वेबसाइट है उसमें भी आप कर सकते
1: ओ
0: हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारा जो GB पंत हॉस्पिटल में एक काउंटर है, तो जो भी रेफ़र होते हैं वो काउंटर के थ्रू ही जाते हैं, तो वो जो स्टाफ वहाँ पे है उनको गाइड कर देते हैं कि आपके पास आपके प्रेफरेंस के आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आपका हॉस्पिटल वो बता देते हैं। खासकर हमारे ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ या तो चेन्नई जाना पसंद करते हैं या फिर कोलकाता जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट पोर्ट है,
1: नियरेस्ट है।
0: और तो जो हॉस्पिटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उसकी जानकारी हमारे काउंटर से मिल जाता है और जो हमारे स्टाफ हैं उनको गाइड।
1: अगर किसी लाभार्थी को अस्पताल में योजना का लाभ लेने में परेशानी आती है या
0: जी
1: उसे किसी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए कहाँ और किसके पास जाए?
0: जहाँ तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, हम लोग जो काउंटर की बात मैंने कही GB पंत, वहीं से गाइड करके बेनिफिशरीज को भेजते हैं अलग अलग स्टेट्स के अस्पतालों में। तो जैसे भेजते हैं उनके पास जो यहाँ का स्टाफ होगा उनका कांटेक्ट नंबर दे करके भेजते हैं, एक बाकायदा एक हैंडआउट देते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो किस जो यहाँ पे जो स्टाफ है उसका नंबर देते हैं, और जो हॉस्पिटल में हम भेजते हैं वहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेटर होता है आयुष्मान भारत का, तो उसका नंबर भी हम देकर ही भेजते हैं ताकि
1: जी
0: कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आयुष्मान भारत के अंदर में एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन है जिसमें कोई भी कॉल करके अपना कोई भी शिकायत या जानकारी ले सकता है
1: जी
0: और ये 24/7 काम करता है। तो ये नंबर है 1-4-555, 1-4-555
1: 1 4 555
0: जी।
1: जी
0: तो इस पे आप डायल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई शिकायत है तो उसमें भी वो आपका ऑपरेटर उसको में मदद कर देगा, और ये 24/7 ये स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर है जो आप हमेशा जो लाभार्थियों को मदद में तत्पर रहता है। इन इसके अलावा भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको CGRMS बोलते हैं, सेंट्रल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर भी बेनिफिशरी अगर कोई शिकायत है तो ऑनलाइन जा करके अपना शिकायत दर्ज कर सकता है,
1: जी
0: और किसी के अगेंस्ट में भी, अगर अस्पताल में कुछ दिक्कत हुआ तो उसके खिलाफ, कार्ड बनाने में कुछ दिक्कत हुआ उसके उसके रिलेटेड कंप्लेंट कर सकता है। तो ये पोर्टल में जब रजिस्टर होता है तो इसको इसके समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमेटी होती है और एक स्टेट लेवल की कमेटी होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटल हो जाता है वो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी उसको सेटल करते हैं, या उसको और एस्केलेट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका समाधान नहीं हो रहा है तो स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी होता है, वहाँ
1: जी
0: पे ये ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाता है।
1: अंत में आपने योजना से जुड़ी पात्रता, कार्ड, उपचार, अस्पताल और शिकायत निवारण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। अब आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूक हो?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत गंभीर बीमारी के समय में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए एक वरदान है, तो
1: जी
0: उसके लिए उस लाभ को उठाने के लिए जो जो चीज़ें हमें करना होता है उसको उसके ओर सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, और जो समय रहते अपना कार्ड बना लेना चाहिए। तो जैसे हमने बात किया कि जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनका कार्ड तो आप अपने आप बना सकते हैं और उनका उनको ही इलाज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है।
1: जरूरत होता है।
0: तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सभी, खासकर बच्चों से, कि अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके माँ बाप हो या आपके दादा दादी हो, उनका कार्ड ज़रूर आप बना लीजिए, क्योंकि बच्चे सब आजकल
1: जी
0: स्मार्टफोन
1: स्मार्ट
0: में
1: है।
0: स्मार्ट
1: जी
0: रहते हैं और उनके मोबाइल पे बहुत सारा ऐप रहता है,
1: जी
0: तो एक

0: ऐप और डाउनलोड कर लीजिए, ये आयुष्मान ऐप करके है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये आयुष्मान ऐप में अपने जितने भी आपके एल्डर्स हैं उनका 70 साल से ज़्यादा लोग आपके घर में या आपके पड़ोस में आपके दोस्तों के घर में सभी का बनाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनका कार्ड हम सैचुरेट कर पाएँ,
1: जी
0: क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा भी पीछे हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि 9,000 लोग हैं यहाँ पे जो 70 साल से ऊपर हैं, लेकिन हम लोग अभी भी 4,500 का ही कार्ड बना पाए हैं। और वैसे ही बाकी जो PHH और AAY रेशन कार्ड के होल्डर्स हैं वो भी अपना बना के रख सकते हैं, तो ये ऐप से ही उनका भी बन जाएगा। एक और ऐप है जो भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया, आरोग्य सेतु,
1: आरोग्य सेतु
0: तो इसके अंदर भी आपको आयुष्मान भारत के संबंधित जानकारी मिलेगा। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी को कि अपने स्मार्टफोन में ये दो ऐप और ऐड कर लीजिए, आयुष्मान
1: उसका
0: ऐप
1: लाभ उठा
0: और
1: सके।
0: आरोग्य सेतु ऐप, और इसका लाभ उठाइए। और क्योंकि बीमारी कभी भी आ सकती है अचानक, तो कार्ड आपके पास है तो आसानी से आप उसका सामना कर सकते हैं और
1: जी,
0: कैशलेस इलाज आप कर सकते हैं
1: करवा
0: उसमें।
1: सकते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज की बातचीत में हमने जाना कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य भी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक करना है। इसलिए जरूरी है कि पात्र लाभार्थी योजना से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपनी पात्रता जांचें और आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ ही सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष कड़ी से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भारत सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक

हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरवगान।

कल सवेरे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर वन्य प्राणी सप्ताह 2026 के उपलक्ष्य पर सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर भरका से वार्ता होगी। सुबह 9 बजे चंद फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे।

0: 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नौ बजकर 45 मिनट पर चंद फिल्मी गीत प्रसारित किया जाएगा। 2 Soldiers का प्रसारण समय रहेगा 10 बजे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। यूपीएससी की 100 साल की यात्रा पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भी संस्था पर देश का भरोसा कायम है। बड़ी त्रासदी को टालने वाले भारतीय कैप्टन स्मिथ मछार के अद्भुत साहस की देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने की सराहना। 72वीं वन्यजीव सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले मिनी मैराथन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कल कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। और डिगलीपुर में टीबी मुक्त भारत जागरूकता रैली आयोजित, एनसीसी

0: कैडेटों ने क्षय रोग की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को किया जागरूक। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: मैं अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। फ्लाई दुबई विमान घटना में असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित मछार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने अपनी बहादुरी और त्वरित कार्रवाई से बड़ी त्रासदी को टालते हुए कई लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित की पत्नी और माता पिता से बात कर उनकी बहादुरी की सराहना की और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी उनके साहस, कौशल और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार कैप्टन स्मित का सऊदी अरब के तबूक स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल डॉ दिनेश शर्मा से मुलाकात कर द्वीपवासियों की समस्याओं को लेकर दो ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में सरकारी नौकरियों में द्वीपवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 व मिडिल स्ट्रेट क्रीक पुल का जल्द निर्माण, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण, नियमित अंतरद्वीपीय जहाज सेवा और बिजली पानी की दरें कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मांगे रखी गई। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पी कन्नन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर द्वीपवासियों से जुड़ी विभिन्न मांगें रखी। इनमें स्वास्थ्य सेवा, हवाई किराया, सरकारी आवासों का रखरखाव, रोजगार आरक्षण, बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं। उपराज्यपाल ने सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने अंतर्द्वीपीय उड़ान और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार तथा बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मिनी मैराथन और टीबी मुक्त भारत जागरूकता रैली। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 72वें वन्यजीव सप्ताह के तहत आयोजित होने वाली मिनी मैराथन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कल सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कुछ मार्गों पर

0: वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान सेलुलर जेल, गर्ल्स स्कूल, फ्लैग पॉइंट से सिंक्लेयर्स बेव्यू, मजार, साइंस सेंटर, हॉर्नबिल नेस्ट होते हुए कार्बाइन स्कोव तक का मार्ग वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने आम लोगों से यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में हिंदी पखवाड़ा के हिस्से के रूप में आज क्विज और अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज की प्रतियोगिता के निर्णायक अनन्या ने अपने विचार रखे। उन्होंने कार्यक्रम को काफी मनोरंजक बताते हुए प्रतिभागियों के उत्साह और प्रस्तुतियों की सराहना की।
1: पखवाड़ा में मैंने काफी जगह पे प्रोग्राम्स देखे हैं, बट ऐसे ऑफिशियली चार दिन तक ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन्स चलना और स्टाफ लोगों का बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना अपने आप में एक्चुअली में काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और फिल्मी गानों के राउंड्स में ही मैं एक्चुअली मैंने जजमेंट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग सारी जानकारी इनके पास इतना अच्छा है कि शायद कुछ कुछ जवाब तो मुझे भी नहीं आता था, तो एक्चुअली में मैंने बहुत मुझे बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच, और ये प्रोग्राम करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो।
0: डिगलीपुर में सहायक आयुक्त के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें 5 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य लोगों को क्षय रोग की रोकथाम, उपचार और दवाओं का निर्धारित कोर्स पूरा करने के प्रति जागरूक करना था। रैली में एनसीसी कैडेटों के साथ माई भारत स्वयंसेवकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर के चिकित्सा कर्मचारियों और प्रशासनिक भवन के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान डिगलीपुर के लिए विशेष जहाज सेवा शुरू करने और मौजूदा सेवाओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान श्री विजयपुरम और डिगलीपुर के बीच बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, जिससे परिवहन सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए अक्टूबर माह में डिगलीपुर के लिए बड़े यात्री जहाजों की सेवा का अनुरोध किया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण श्री विजयपुरम का क्षेत्रीय मानव संग्रहालय गांधी जयंती के अवसर पर आम जन के लिए संग्रहालय में प्रवेश और अन्य गतिविधियां कल बंद रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीएससी की 100 साल की यात्रा पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भी संस्था पर देश का भरोसा कायम है। बड़ी त्रासदी को टालने वाले भारतीय कैप्टन स्मिथ मछार के अद्भुत साहस की देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने की सराहना। 72वें वन्यजीव सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले मिनी मैराथन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कल कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। और डिगलीपुर में टीबी मुक्त भारत जागरूकता रैली आयोजित, एनसीसी कैडेटों ने क्षय रोग की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को किया जागरूक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों और जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। और अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर शनिवार 3 तारीख को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान रविवार 4 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ग्रेटर अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंपबेल बे रविवार 4 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान के लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी उसी रोज रात्रि 9 बजे। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी कालीघाट सोमवार 5 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान मंगलवार 6 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और नैनकौरी होते हुए कैंपबेल बे की यात्रा पर एमवी सेंटिनल बृहस्पतिवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान रविवार 11 तारीख को रात्रि 9 बजे कैंपबेल बे से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयान नालंदा नैनकौरी होते हुए कैंपबेल बे की यात्रा पर मंगलवार 6 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान बृहस्पतिवार 8 तारीख को सुबह 8 बजे कैंपबेल बे से चलकर नैनकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड शहीदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीदीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका शहीदीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीदीप से स्वराजदीप प्रस्थान करेगा और जलयान कल दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी वंडूर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजदीप से शहीदीप जाएगा और जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीदीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी रंगत शहीदीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा जलयान की शहीदीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी कल शाम 4:30 पर। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और जलयान शनिवार 3 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजदीप से छूटकर शहीदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं दस्तूर फिल्म से। स्वर अभिजीत की है। मजरू सुल्तानपुरी के बोलवा धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा खामोशी फिल्म का गीत। गायक कलाकार है अलका याग्निक और हरिहरन।

श्रोता, इसी के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि हमने कितनी ऊंचाइयां हासिल की, बल्कि इससे भी तय होती है कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए हमने कितने लोगों का सम्मान किया और कितनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना किस सोच और हिम्मत

0: साथ करना है या हमारे हाथ में होता है। इसलिए कठिन समय में निराश होने के बजाय अपने प्रयासों पर विश्वास रखें। धीरे धीरे उठाया गया हर कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। दोस्तों, समय बदलता जरूर है, बस हमें अपनी उम्मीद, मेहनत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा और सादगी उनके जीवन के प्रमुख आदर्श थे। उन्होंने अपने विचारों और शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी। गांधी जी का जीवन सत्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानवता का संदेश देता है। वे हमेशा

0: सुनते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा और सादगी उनके जीवन के प्रमुख आदर्श थे। उन्होंने अपने विचारों और शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी। गांधी जी का जीवन सत्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानवता का संदेश देता है। वे हमेशा स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता पर जोर देते थे। उनके विचार आज भी लोगों को ईमानदारी, शांति और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी विषय में सुनते हैं यह वार्ता।

भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं है, बल्कि त्याग, संघर्ष और बलिदान की जीवंत कहानी है। इस देश की मिट्टी में स्वतंत्रता सेनानियों का लहू है और उनके सपनों की खुशबू समाई हुई है। 30 जनवरी का दिन, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को झकझोर देने वाला क्षण है। इसी दिन भारत ने अपने सबसे महान पुत्र महात्मा गांधी को खो दिया। यह दिन हमें आज़ादी की कीमत, अहिंसा की ताकत और सत्य के मार्ग की याद दिलाता है।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने अपमान, शोषण और अन्याय की गहरी पीड़ा झेली। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और आत्मसम्मान को तोड़ने का प्रयास किया। किसानों पर अत्याचार, कारीगरों की तबाही और भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझना, ये सब उस दौर की सच्चाई थी। लेकिन हर अंधेरे के बीच एक रोशनी जन्म लेती है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारी और नेता सामने आए। किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने फांसी का फंदा चूमा और किसी ने अपने विचारों से साम्राज्य को चुनौती दी। इसी संघर्ष के बीच उभरे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने आज़ादी की परिभाषा ही बदल दी।

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका जीवन आरंभ से ही सादगी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहा। लंदन में कानून की पढ़ाई और फिर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामना, इन अनुभवों ने गांधी जी के विचारों को आकार दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहली बार सत्य और अहिंसा को संघर्ष का माध्यम बनाया। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित सबको इसमें शामिल किया।

गांधी जी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, हरिजन आंदोलन चलाया और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। खादी और स्वदेशी उनके लिए केवल कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक थे। उनका सपना ऐसा भारत था जो केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत हो।

गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आज़ादी को जन आंदोलन बना दिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में गांधी जी की सोच स्पष्ट थी, अन्याय का विरोध लेकिन बिना हिंसा के। नमक सत्याग्रह जैसे प्रतीकात्मक आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। एक मुट्ठी नमक ने यह साबित कर दिया कि साम्राज्य की ताकत बंदूकों में नहीं बल्कि जनता की एकता में होती है।

लेकिन गांधी जी का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें आलोचनाओं, विरोध और जेल यात्राओं का सामना करना पड़ा। कई बार उनके अपने ही लोग उनसे असहमत हुए, फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके उपवास केवल राजनीतिक दबाव नहीं थे, बल्कि आत्मशुद्धि और नैतिक अपील का माध्यम थे। उन्होंने यह सिखाया कि नैतिक साहस शारीरिक शक्ति से कहीं बड़ा होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी अधूरी खुशी के साथ आई। देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए और समाज में गहरी हिंसा फैल गई। गांधी जी इस हिंसा से व्यथित थे। वे उस आज़ादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे जो खून से सनी हो। उन्होंने अंतिम समय तक शांति, एकता और भाईचारे की अपील की,

शहीद दिवस हमें केवल गांधी जी की मृत्यु की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके जीवन और विचारों को आत्मसात करने का अवसर देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे असंख्य बलिदान हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने ज्ञात अज्ञात सेनानी।

आज जब हम 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखते हैं, तो वह मौन केवल श्रद्धांजलि नहीं होती, बल्कि आत्ममंथन का क्षण होता है। क्या हम उस भारत की कल्पना के अनुरूप चल रहे हैं जिसे गांधी जी ने देखा था? क्या आज का समाज सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के मूल्यों को अपनाए हुए हैं? आधुनिक भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर, लेकिन साथ ही असहिष्णुता, हिंसा और वैचारिक टकराव भी बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में गांधी जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

वे हमें सिखाते हैं कि असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं होता और शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं होता। गांधी जी का जीवन एक प्रमाण है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिवर्तन ला सकता है। न उनके पास सेना थी न सत्ता, फिर भी उन्होंने साम्राज्य को झुका दिया। उनका सबसे बड़ा हथियार था सत्य और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का विश्वास। शहीद दिवस हमें यह संकल्प लेने का दिन देता है कि हम केवल गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर न रुकें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। ईमानदारी, सहानुभूति, सहिष्णुता और नैतिक साहस, ये मूल्य आज भी उतने ही ज़रूरी हैं।

अंततः महात्मा गांधी इतिहास की किताबों में कैद कोई अध्याय नहीं है, वे एक जीवित विचार हैं जो हर उस व्यक्ति के

जो हर उस व्यक्ति में सांस लेते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है लेकिन मानवता को नहीं छोड़ता। शहीद दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और सत्य का मार्ग चाहे कठिन हो लेकिन वही सबसे स्थायी होता है।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता, जिसके वार्ताकार थे दीपक कुमार सिंह। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, भारत की धरती ने अनेक महान व्यक्तित्व को जन्म दिया है जिन्होंने अपने त्याग, सादगी और देश सेवा से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। ऐसे ही महान व्यक्तित्व में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी, ईमानदार राजनेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन सादगी, अनुशासन, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान आज भी देशवासियों को मेहनत और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। जी दोस्तों, आइए इसी विषय में सुनते हैं यह वार्ता, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, सरल व्यक्तित्व और कुशल राजनेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे बचपन से ही देशभक्ति और सादगी के संस्कारों से प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे अपनी ईमानदारी, विनम्रता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की एकता, आत्मनिर्भरता और विकास को विशेष महत्व दिया। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों में मेहनत, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। इस नारे के माध्यम से उन्होंने देश की सुरक्षा में सैनिकों और देश के विकास में किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान दिया। दोस्तों, शास्त्री जी का जीवन सादगी और आदर्शों का उदाहरण था। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। उनका मानना था कि देश के प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक को ईमानदारी और मेहनत से अपना योगदान देना चाहिए। 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। उनका जीवन आज भी भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लाल बहादुर शास्त्री को

उनकी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं गीत गाता चल फिल्म से। आवाज़ जसपाल सिंह की है, गीत व संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है घायल फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर और पंकज उधास की है।

अब लीजिए सुनते हैं साहिर की लिखी गीत रचना। फिल्म दो कलिया में इस गीत को संगीत से नवाजा है रवि ने। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

फिल्म आया सावन झूम के में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हमारे अगले गायक कलाकार है किशोर कुमार। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। फिल्म का नाम है नया जमाना।

श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोज का समाचार। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन भर्ती सूचना। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम में एक वर्ष के अनुबंध अवधि के लिए 90,000 प्रतिमाह के वेतन पर 2 इनलैंड वेसल सर्वेयर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो। उम्मीदवारों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज, बायोडाटा तथा स्वसत्यापित प्रतियों का एक सेट साथ लेना अनिवार्य है। विस्तृत पात्रता मापदंड के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.andaman.nic.gov.in के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन से भर्ती नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सहायक निदेशक प्रशासन पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, फोन नंबर 03192233689।

ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगंज दक्षिण अंडमान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कन्यापुरम के नयापुरम 2 में हेल्पर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद की संख्या है 1। आंगनवाड़ी हेल्पर पद के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवार उसी गांव की निवासी होनी चाहिए जहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण या सामुदायिक कार्य में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और प्रतिमाह मानदेय 8,000 देय होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ 9 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगंज के कार्यालय में जमा करना होगा। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 12वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ 9 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO ICDS प्रोजेक्ट फरारगंज के कार्यालय में जमा करना होगा। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 12वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पहचान और पते का प्रमाण पत्र, उम्मीदवार गांव में अपने निवास की पुष्टि के लिए अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय दी जाएगी। आवेदन पत्र संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और CDPO कार्यालय ICDS प्रोजेक्ट फरारगंज से कार्य समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुआ। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में गौरव खान।

श्रोता, अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 पर कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31

0: अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
2: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
3: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
2: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
6: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
7: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है,

0: बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है, राष्ट्रीय सैनिक स्मारक। स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
2: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामी, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की।

0: शुरुआत करेंगे।
1: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहां पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ। एक माँ अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
0: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को पंजाब में, जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट

0: अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
1: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को, पंजाब में जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
2: सी, माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ पंजाब का। पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहाँ ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपीएम यूज करते रहे हैं, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्ला खोमेनी का रिवोल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू यूगोस्लाविया, मगर चूंकि यहाँ इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा। और वही समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था। पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPOIM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था, तो इन सब में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है। और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
1: आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
2: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं, तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो आप सोचिए हर 6ठा 7वां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजंस में ड्रग यूजर्स या NDPS एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है, ओट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, इतना छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
1: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना, और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं?
2: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% या उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में। और देखिए, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है। जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है, दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचें, उन दोस्तों के बीच में ना जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए, ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को, जो लोग नशा कर रहे थे, उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है, जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए, ये प्रिवेंट करता है फैमिली

0: को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
1: सो डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिसपे काबू पाया जा सकता है, और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
0: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे। अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है, तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है। और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है। मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है, इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस, मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है, उसको यूज किया जाए। तो इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर रहे हो।
1: तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेंड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहां पे जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे उनको डील करें, तो इस डीलिंग में जैसे आपने विज्ञान की बात कही, विज्ञान के साथ साथ आपको लगता है कि एक सेंसिटिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है?
0: समझिए, मैंने पहले जो स्टिग्मा वर्ड किया था वो यही है। दुनिया में एकमात्र बीमारी है जिस बीमारी के लिए व्यक्ति को जेल जाना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना होता है। तो समाज और देश और सरकार को समझना होगा कि यह व्यक्ति जो नशे के गिरफ्त में है उसको इलाज की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी इलाज की जरूरत है, उसको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स हैं उसके सपोर्ट की जरूरत है।
1: तो जैसा आपने कहा कि अभी जो दायरा है ऑलरेडी बहुत बड़ा है जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है, उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
0: देखिए, मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है। इनको ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कहां पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए। क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज हैं ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे, तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में भी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है, तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
1: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे, जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज हैं, वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
0: देखिए, अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहां से हैं, NSS से हैं, NYK जो MyGov आजकल उसका नया नाम हो गया है, NCC है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं। क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं कहता हूँ,

0: जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा, और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
1: सो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस हैं, ये सभी को प्रभावित करती हैं और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, उनके पूरे जो पीढ़ी है उसको। तो क्या कहेंगे आप, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
0: देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है बिटवीन ये जो तीन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। वहां पे जो कल्टीवेशन होता है उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया आता है, या इंडिया के थ्रू वो बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरा जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी आपको पता है कि वहां पे पोलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है,
1: जी
0: तो वहां पे जो ड्रग अभी ओपियम पैदा हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे ईस्टर्न जो तीन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उससे आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता है कि कहां से ड्रग निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारे संबंध है उन एजेंसीज के साथ जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं उनको जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

0: ये आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति। कलाकार हैं श्रीमती तुली रेखा दत्तो। श्रीमती तुली रेखा दत्तो 3 दशकों से भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हैं। आप एक ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्होंने नजरुल गीति, भजन, उपशास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय संगीत जैसी विधाओं में अपना परचम लहराया है। आप अपनी भावात्मक कलाकारी और शास्त्रीय अनुशासन दोनों के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती तुली रेखा दत्तो के संगीत का सफर हमारी बहुमूल्य गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। पंडित एटी कानन, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लई, विदुषी शुभ्रा गुहो, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्रा और विदुषी डालिया राहुत समेत देश के सुविख्यात संगीतज्ञों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड की कलाकार श्रीमती तुली रेखा दत्तो ने अपने श्रोताओं के समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत समारोह, मीडिया प्रसारण और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में आपने अनगिनत कार्यक्रम पेश किए हैं।
1: Tonight, in the national program of regional light and folk music, we present light music in Bengali through the rendition of Nojrul Giti by Srimati Tuli Rekha Datta. A distinguished vocalist with over 3 decades of dedicated service towards Indian music, Srimati Tuli Rekha Datta has established herself as a much

0: sought after performer in Nojrul Giti, Bhajan, semi-classical music as well as classical music. She is renowned for her expressive artistry and classical discipline. The musical journey of Srimati Tulirekha Datta reflects the rich Guru Shishya Parampara, nurtured under some of India's most eminent maestros, namely Pandit A.T. Kanan, Ustad Muhammad Dilshad Khan, Pandit Dinanath Mishra, Pandit Balaram Pillai, Vidushi Shubhra Guha, Srimati Meera Bandyopadhyay, Sri Shukumar Mitra, and Vidushi Dalia Rahut. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Srimati Tulirekha Datta has enthralled her audience through concerts, broadcasts, lecture demonstrations, and national as well as international performances.
1: आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक अति प्रचलित नजरुल गीते के साथ करेंगी, जिसके रचयिता स्वयं काजी नजरुल इस्लाम हैं। वो विद्रोही कवि जो आज भी हर बंगालवासी के हृदय का गौरव हैं। गीत के बोल हैं, महाविद्या आद्यशक्ति परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त सृष्टियां ज्ञान शक्ति प्रेम और मुक्ति उसी शाश्वत दिव्य माता से वाहित होती हैं।
0: श्रीमती तुलीरेखा दत्ता बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन टुनाइट विद अ वेरी पॉपुलर नजरुल गीति पेंड बाय नन अदर देन द रिवर्ड कवि नजरुल इस्लाम, the patriot poet who holds a place of pride in every Bengali's heart. The song goes as Mohabidya Adya Shakti, meaning the unity of all divine feminine manifestations in one supreme mother, affirming that all creations, knowledge, strength, compassion and liberation flows from the eternal divine mother.

0: नजरुल गीती के अपने गुलदस्ते से श्रीमती तुलीरेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी गीत आधो आधो बोल लाजे बाधो बाधो बोल, जो कि अनकहे प्रेम की सुंदरता की बात करता है, जहां शब्दों से अधिक मौन की भाषा कह जाती है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम श्रीमती तुलीरेखा दत्त फ्रॉम हर बास्केट ऑफ नजरुल गीती इज आधो आधो बोल, which celebrates beauty of unexpressed love, where silence often conveys more than words.

0: नजरुल गीति की इस सुंदर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती तुलीरेखा दत्तो अब प्रस्तुत करेंगी बोऊ कथा कौ अभिमानिनी, जो कि प्रेम में आपसी बातचीत और मान मनोवल की बात करता है। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि रिश्तों को संवारने के लिए अभिमान छोड़ आपसी समझबूझ और वार्तालाप की राह अपनानी चाहिए।
1: Continuing with her lovely rendition of Nozrul Giti, Srimati Tulirekha Datta now presents Bou Kotha Kau Obhimanini, a song that depicts the power of love, communication and reconciliation. It emphasizes that relationships flourish when pride gives way to understanding and heartfelt conversation.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो लोगों को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: Srimati Tulirekha Datta concludes her presentation of Nojrul Giti tonight with Jhum Jhum Jhumra Nache Ke Elo, which depicts our spontaneous love for music, dance and the joyful rhythm of life. It portrays dance as a universal expression of happiness that unites people with nature and the divine.

0: अभी आप बंगाल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीति सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीति की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बनी रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीति कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता। And with this, we end tonight's presentation of Nojrul Giti, which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
3: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन दैट हैज लिव्ड थ्रू जनरेशंस एंड कंटिन्यूज टू कनेक्ट पीपल विद देयर रूट्स। Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is the well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuances of folk music and the traditions associated with it from her guru Manoranjan Ojha.
2: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्लाह के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं एही पार शीतला मैया।
3: आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। देवी गीत ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बिहार फोक ट्रेडिशन। वन ऑफ इट्स

0: अब प्रस्तुत है शिव भजन, जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना किसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

0: अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर उत्पन्न भावनाओं, पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई।
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टांसेस सरेंडिंग लॉर्ड रामा's exile through this simply yet powerful folk form. The song brings alive the emotions within the family, the pain, the conflict, and the sorrow of separation. Let us listen to this Lok Bhajan titled Ram Kahan Aayi.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: वन सच ट्रेडिशन इज द छठी सेरेमनी ऑब्जर्व्ड ऑन द सिक्स्थ डे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इट इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन फॉर द entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family playfully ask the new mother for a different kinds of clothes and ornaments. Now let us listen to this traditional chhathi geet titled Chhathiya Pujele Nandi. Chhat

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रिनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कंपेनियन म्यूजिशियन Where, Arjun Kumar Chaudhary on Nal, Abhishek Pathak on Harmonium and Mohammad Saleem on Flute. The program was recorded at Akashwani Patna Center.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 11 बजे है। मौसम, कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों और जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ।

0: इसके अंतर्गत सुनिए अनमोल विचार।
1: आज 2 अक्टूबर है, यानी वो दिन जब पोरबंदर की धरती पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने सत्य और अहिंसा को अपना धर्म बनाया और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि बिना हथियार के भी सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्हें स्नेह से हम बापू कहते हैं। गांधी जी का जीवन एक साधारण इंसान के असाधारण सफर की कहानी है। उनकी लाठी साधारण थी, पर उसके सहारे उन्होंने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। उनकी पोशाक साधारण थी, पर उनके विचार असाधारण। उनकी आवाज धीमी थी, पर संदेश गूंजता था पूरी दुनिया में। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य सबसे शक्तिशाली हथियार है, अहिंसा सबसे बड़ा साहस है और सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। आज गांधी जयंती पर हम सबके लिए यही संकल्प का क्षण है। आइए हम बापू की उस सीख को याद करें, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यानी अगर हम